बा सच्चे ना दरबार ऊपर खर्च मंगा जबे देता काहे दीवान को कलमे का हम तुमा मेल दर ले लिखा पीठ छुटे नान का ज्यों तेल पड़े।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, FM 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, FM 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है।

0: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुक की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेब 343 शरीय 6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत।

राजर्षि जनक की यज्ञशाला जहां सीता जी का स्वयंवर आयोजित है। सभी राजे महाराजे अपनी सुंदरतम वेशभूषा धारण किए बैठे हैं। रंगभूमि में जनक सुता का प्रवेश होते ही देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प वर्षा करती अप्सराएं गाने लगीं। चकित चितवन से सीता जी ने श्री राम को देखा, किंतु गुरुजनों तथा उपस्थित अतिथि समाज को देखकर वो सकुचा गईं। श्री राम की मोहिनी छवि हृदय में बसाकर वो लाज छुपाने हेतु सखियों को देखने लगी। श्री राम तथा सीता का युगल मनोहारी रूप देखकर उपस्थित जन समुदाय मन ही मन विधाता से प्रार्थना करने लगा कि वो महाराज जनक को प्रेरणा दें कि वो अपना प्राण त्याग कर सीता जी का विवाह श्री राम से कर दें। वृद्धावली गाते हुए भाटों ने महाराज जनक के प्राण को वाणी दी। इस भरी सभा में शिव के कठोर

और धनुष को जो भी तोड़ेगा सीता जी उसी का वरण करेंगी। प्रण सुनकर उपस्थित राजा एक क्षण को ललचाई दृष्टि से सीता जी का सुंदर रूप निहारते हैं, किंतु दूसरे क्षण उनकी दृष्टि मानो शिव जी के धनुष को तौलने लगती है। तमक कर वो धनुष को पकड़ते हैं, किंतु जब वो टस से मस नहीं होता तो लजाकर वापस चले जाते हैं।

साढ़े पांच बजे। शाम साढ़े छे बजे देहाती प्रोग्राम च कम दियां गल्लां होणगियां, मंडियां ते भां होणगे। अवतार सिंह बलिंग दे नावल ते आधारित लड़ीवार नाटक होया देस पराया दा अगला भाग सुनोगे। इस तो इलावा दुध अते दुध पदार्थां दी संभाल बारे डॉक्टर अमनदीप जानकारी देंगे।

0: करिष्यति। पञ्चत्रिंशत् नूतनाः मन्त्रिणः मन्त्रिमण्डले समाविष्टाः भविष्यन्ति। शपथग्रहणं प्रातः एकादशवादने लोकभवने भविष्यति। नूतनेन समावेशेन शुभेन्दुप्रशासने महत्वपूर्णरूपेण संवर्धनं भविष्यति, येन मई मासस्य नवमे दिनाङ्के पञ्चमन्त्रिभिः सह कार्यभारं स्वीकृतमासीत्। अनेन विस्तारेण राज्यमन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणां कुलसंख्या एकचत्वारिंशत् यावत् वर्धिता भविष्यति। निर्वाचनायोगेन दश राज्यानां चतुर्विंशतिः राज्यसभासदस्यानां द्विवार्षिक निर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य घोषणा अद्य क्रियते। भूतपूर्वः प्रधानमन्त्री एच.डी. देवगौड़ा, केन्द्रीयमन्त्रिणौ जॉर्ज कुरियन तथा रवनीतसिंहश्च तेषु सदस्येषु अन्तर्भवन्ति। आन्ध्रप्रदेशे, गुजराते तथा कर्णाटके प्रत्येकस्मिन् राज्ये चत्वारि चत्वारि आसनानि सन्ति। राजस्थाने तथा मध्यप्रदेशे प्रत्येकस्मिन् राज्ये त्रीणि त्रीणि आसनानि सन्ति। झारखण्डे द्वे आसने स्तः, मणिपुरे, मेघालये, अरुणाचलप्रदेशे च, मिजोरमे च प्रत्येकस्मिन् राज्ये एकैकम् आसनं रिक्तमस्ति। आयोगस्यानुसारं जूनमासस्य अष्टादशदिनाङ्के मतदानं भविष्यति। मतगणना अपि तस्मिन्नेव दिने भविष्यति। महाराष्ट्रस्य, तमिलनाडुराज्यस्य, ओडिशाराज्यस्य च प्रत्येकस्य एकस्य आसनस्य कृते राज्यसभायाः उपनिर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य अपि आयोगेन घोषणा क्रियते। एतत् निर्वाचनमपि अग्रिममासस्य अष्टादशदिनाङ्के भविष्यति। एकोननवतिवर्षीया प्रख्यातगायिकायाः सुमनकल्याणपुरस्य मुम्बईनगरे स्वनिवासस्थाने मृत्युः अभवत्। 50-29 शततमाद् वर्षात् 70-29 शततमं वर्षं यावत् चलचित्रसङ्गीतस्य स्वर्णयुगे नैकासु भारतीयभाषासु कृतकार्याणां कृते एषा वयोवृद्धगायिका प्रसिद्धा आसीत्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे अंतिमस्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलं 5 स्तोभैः पराजित्य गतविजेतृदलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन अस्य वर्षस्य श्रृंखलापि विजिता इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343 शरीय 6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआर 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा ताई जलंधर केंद्र है। पेश ने हुण तक दिया मुख्य खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश की अनमोल विरासत नूं सुरक्षित रखने लई काम कर रही है। आकाशवाणी ते अपने मन की बात प्रोग्राम च राष्ट्र नूं संबोधन करदे प्रधानमंत्री ने देशवासियों नूं भयानक गर्मी दे मौसम दौरान बेहद सावधानी बरतन अते सरकारी दिशा निर्देशों की पालना करन दी अपील कीती है। विज्ञान अते तकनालोजी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 सालों के तकनीकी बदलाव दौरान भारत तकनालोजी लैण वाले की थां एक तकनालोजी आगू वजो उभरिया है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चोटी दियां पोजीशनां हासिल करन वाले विद्यार्थियों नाल मुलाकात कीती। उन्होंने राज दी सिख्या प्रणाली छोरे महत्वपूर्ण सुधारन ते खुशी प्रगट कीती। केंद्रीय रेल राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अनुसूचित जातियां बारे अपने हालिया विवादित बयान ते अफसोस प्रगट करदियां मुआफी मंगी है। पंजाब दे माल मुड़ मुसीबा ते आफत प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने दस्या है कि सरकार ने हड़ रोकू कारजां ते सूबे भर विच किसी भी कुदरती आफत नाल प्रभावशाली ढंग नाल निपटन लई अगाऊं 146 करोड़ रुपए जारी कीते ने। पंजाब ने देश भर चों तंबाकू सेवन दे सब तो घट मामलियां नाल जनतक सेहत विच एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल कीती है। मौसम विभाग ने 4 जून तक पंजाब, हरियाणा ते चंडीगढ़ दे वख-वख हिस्सियां च गरज चमक नाल तेज हवावां चलण संबंधी येलो अलर्ट जारी कीता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स नूं 5 विकटां नाल हरा के आईपीएल क्रिकेट विश्व 26 का खिताब जित लिया है। ते भारत दे सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ते चिराग शेट्टी की जोड़ी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन च पुरुष डबल्स का खिताब जित लिया है। आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते पेश कर रहे प्रोग्राम सोनी सवेर।

लो जी, गाना खास तौर ते इसलिए सुनाया है, कभी तो नजर मिलाओ कभी तो करीब आओ। असी दुनिया दे करीब जाना लोचदे हाँ, पर कभी अपने करीब जाने की कोशिश नहीं की। जरा शीशे दे अगे जो खड़े हुन्ने हो या मोबाइल ते सेल्फी लैने हो, की सोच के लैने हो? कभी अपने आप नू सवाल पूछे भी तेरा दिल की चाहता है, तेरी इच्छा की है? या हाँ, जिहड़ी गल पहला कीती सी कि दिमाग ते मन नू भी साफ करना जरूरी है, ते ओ कॉपी पेन की गल कीती सी। मन साडा है, बड़े सारे विचार दिन पर आउंदे ने। मन यानी दिल या मन या दिल दोनों वक्रे वक्रे ने, इहदे बारे थोड़ा विचार कर लियो तुसी खुद। इस वेले मैं निक्का जिहा विचार थोड़े नाल सांझा करांगी कि साडे दिमाग दे विच जिहड़ी कहानी चलती है ना, वह साडे दिल दे उलट चलती है। साडे मन च हमेशा वह चलता है जो असी नहीं चाहते, तो बस फिर वह कहानी किसी ना किसी रूप से तो प्रगट हो ही जाती है, क्योंकि बीज तुसी अपने दिमाग दे विच विचार दा बीजिया। जे वह विचार नैगेटिव सी तो कहानी नैगेटिव नैगेटिव बूटा उगेगा, वह जे विचार थोड़े आले दुआले हो जाएंगे, वह जे लोग प्रगट हो जाएंगे। मैं नहीं कहती, ये विद्वान कहते हैं। इस करके अपने दिमाग की सफाई करनी बड़ी जरूरी है। तुसी कहना किद्दां कर सकते हैं, किद्दां लिखिए, किद्दां मिलिए? दुनिया नूं मिलण तो पहला अपने आप नूं जरूर मिलो। सवेरे उठदे हां शीशे च मिल लो, या रात नूं सौण तो पहला मिल लो, ते अपने आप नूं इक्को ही सवाल करो, मेरी जिंदगी दा अज दा दिन किसे दे काम आ सकिया? मैं किसे नूं हसा सकी? मैं किसे नूं किसे दा पेट भरन चो दी मदद कर सकी? मैं कि मैं अपने आप दी तारीफ कर सकी? क्या मेरे अंदर जो इंसान बैठा है उहदी दिली इच्छा की सी कि उसनूं पूरा करन वाली कदम अगे वधाया मैं? इस सारे सवालों के जवाब कितों होर गूगल बाबा चैट GPT कितों नहीं लभने, ये जवाब थानू अंदरों लभणगे। हो सकता है बड़े सारे दोस्तों के मन के सवाल होएगा, मेरी जिंदगी तो एवं ही निकल गई, कई होना मैं जिंदगी से परपस हासिल करना है। थोड़े अंदर ही इन्ह सारे सवालों का जवाब है। कभी अखा बंद करके

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਚੰਦ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 8 ਵਜੇ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर IPL खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
5: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है।

0: जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा।
1: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
3: प्रधानमंत्री

0: कर लेते हैं।
1: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
2: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
1: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया।

0: वे 89 वर्ष की थी, एक श्रद्धांजलि।
1: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है। सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसो रबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुनीष शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां FTA, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों के लिए राहत।

0: वाली हवा 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्रभजोत जी, मैं सुनिया वसदे वेड़े प्रोग्राम च कुछ तब्दीली हुई है।
1: बिल्कुल सुखजीत जी, तब्दीली तो हुई है।
0: ओ केड़ी तब्दीली है भाई?
1: देखो जी, जेड़ा प्रोग्राम आंदा सी ना बुधवार नु, ते ओ हुन हो गया शनिवार नु।
0: यानी कि झांजरां दे बोर हुन शनिवार छन क्या करनगे?
1: बिल्कुल जी, ते जेड़े शनिवार नु प्रोग्राम सी ना, मेरी कलम तो सांझ शक्ति रूपा, ए तुसी सुन सकोगे बुधवार नु।
0: यानी कि बुधवार दी झांजरां दे बोर वाली फरमाइश शनिवार नु छन क्या करेगी, ते शनिवार दे सारे सिलसिले असी बुधवार पेश करया करांगे
1: जी।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
3: वीडियो लाइक करने ते पैसे मिलेंगे? सो इजी।
4: फसिया।
5: अनजान लिंकां ते क्लिक ना करो। RBI कहंदा है,
6: जानकार बनो, सुचेत रहो।
7: मीडियम वेव 343.6 MHz यानी 873 KHz, DRM 864 KHz, FM 100.8 MHz, FM 100.9 MHz ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा ते जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। हुण वेला है प्रोग्राम महक पंजाब दी दा।

पेश ने हुण तक दियां मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवीं दिल्ली च म्यांमार दे राष्ट्रपति नाल दुबली गल्लबात करनगे। केंद्र खादां दी संतुलित ते सही वरतों नूं उत्साहित करन लई अज मध्य प्रदेश दे रायसेन जिले तों खेत बचाओ मुहिम दी शुरुआत करेगा। 10 राज्यां 24 राज्यसभा सीटां लई चोणां संबंधी नोटिफिकेशन अज जारी कीता जावेगा। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर दा कल मुंबई च 99 साल दी उमर च देहांत हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ते आस्ट्रेलिया दे उप प्रधानमंत्री ते रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्शल अज नवीं दिल्ली च दूजी भारत आस्ट्रेलिया रक्षा मंत्री पदरी गल्लबात दी सह प्रधानगी करनगे। केंद्रीय रेल राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अनुसूचित जातियां बारे अपने हालिया विवादित बयान ते अफसोस प्रगट करदियां मुआफी मंगी है। पंजाब दे माल मुड़ वसेबा ते आफत प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने दस्सिया कि सरकार ने हड़ रोकू कारजां ते सूबे भर विच किसे भी कुदरती आफत नाल प्रभावशाली ढंग नाल निपटण लई अगाऊं 146 करोड़ रुपए जारी कीते ने। मौसम विभाग ने 4 जून तक पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ दे वक्ख वक्ख हिस्सों च गरज चमक नाल तेज हवावां चलण संबंधी येलो अलर्ट जारी कीता है। क्रिकेट च रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स नूं 5 विकटां नाल हरा के आईपीएल 2026 का खिताब जित लिया। ते भारत दे मोगली वेंकटराम ने हांगकांग च एशियन अंडर 20 एथलैटिक्स चैंपियनशिप च मर्दां दी 800 मीटर दौड़ च सोने का तमगा जितया। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण महिला शास्त्रीय संगीत दे प्रोग्राम सुरसाधना दा अज दे इस प्रोग्राम च पंडित विश्व मोहन भट्ट दा गिटार ते बजाया राग अहीर भैरव पेश कर रहे हैं।

0: दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
2: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
3: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
3: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
2: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
3: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओ, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है।

0: रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
1: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
0: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
1: यह कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
0: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं
0: जी,
2: लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में
0: जी।
2: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
0: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समता मूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
2: इसको हम समता मूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना
0: जी,
2: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समता मूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना
0: जी।
2: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं
0: जी।
2: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं, ठीक है
0: जी।
2: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है
0: जी।
2: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन ले, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो
0: जी,
2: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती
0: जी।
2: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं
0: जी। आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समता मूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
2: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी

0: कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं
1: जी,
0: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी
1: जी।
0: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे, लेकिन हाँ जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्य धारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझें। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ
1: जी।
0: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।
1: जी प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
0: बिल्कुल।
1: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं।
0: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
1: जी,
0: ठीक है। इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
1: जी,
0: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं
1: जी।
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है
1: जी।
0: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं
1: जी।
0: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं
1: जी।
0: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है
1: जी।
0: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है
1: जी।
0: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है। सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं
1: जी।
0: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं, उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है
1: जी।
0: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं
1: जी।
0: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण

0: रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में।
1: जी,
0: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा।
1: जी,
0: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है।
1: जी, आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
0: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं।
1: जी,
0: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते
1: जी।
0: हैं। जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
1: जी,
0: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की
1: जी।
0: आप सोचिए, आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
1: जी,
0: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है
1: जी।
0: अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है। तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा
1: जी।
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है
1: जी।
0: दोनों भाषाओं में अंतर है और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत
1: जी।
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में
1: जी,
0: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहां? उत्तरी भारत में।
1: बिल्कुल।
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं
1: जी।
0: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी की किसी और मौखिक भाषा में है
1: जी। ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी और समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं।
0: जी देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं, जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं
1: जी।
0: लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है
1: जी,
0: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ के साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है
1: जी,
0: ताकि कोई भी छात्र चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो, अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सके। इसके अलावा CIT NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है जो बहुत सरलता से CIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है
1: जी।
0: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं, इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
1: जी
0: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी

0: कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समता मूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज
1: जी।
0: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं
1: जी,
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब
1: जी,
0: ये प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है, ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें
1: जी,
0: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो
1: जी,
0: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो, व्हीलचेयर आसानी से पहुंच जाए
1: जी।
0: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो
1: जी।
0: आपके विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो। टेक्टाइल पाथ क्या, आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा
1: जी,
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने

0: उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो,
1: रैंप होना
0: व्हीलचेयर
1: चाहिए
0: आसानी से पहुंच जाए।
1: जी।
0: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है, उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो।
1: जी
0: आपके विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो। टेक्टाइल पाथ क्या, आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा।
1: जी जी
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें।
1: बिल्कुल।
0: पीली टाइलें कैसी हैं, उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं,
1: जी
0: उनके उभारों को महसूस कर
1: बिल्कुल
0: सकते हैं। मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं।
1: जी
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें।
1: जी
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं।
1: जी
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी सीआईटी एनसीईआरटी की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना,
1: जी
0: जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है,
1: जी
0: जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों, विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है। और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है।
1: जी
0: तो ये भी एक हमारी पहल है।
1: जी प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि एनसीईआरटी की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से सीआईईटी के वेब पेज से
1: जी
0: मिल सकती हैं। आप सीआईईटी के वेब पेज पे जाइए, वहां पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी।
1: जी
0: और एक और सरल उपाय है,
1: जी
0: आजकल तो गूगल हम सब की मदद के लिए है ही है।
1: बिल्कुल
0: गूगल
1: बिल्कुल
0: पर जाइए, लिखिए ऑडियो बुक्स सीआईईटी एनसीईआरटी, आपको
1: जी
0: सीधा वहां उसी पेज पे ले जाएगा
1: जी
0: और आप वहां से ले सकते हैं।
1: जी
0: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध हैं। और सीआईटी वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं।
1: जी
0: और यह किताबें आपको एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को सीआईटी की वेबसाइट से, एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब से और
1: जी
0: साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निशुल्क, बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में एनसीईआरटी की क्या पहल है?
0: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एनसीईआरटी की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं,
1: जी
0: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं।
1: जी
0: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं,
1: जी
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती
1: जी
0: है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है। और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं।
1: जी
0: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है, लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है।
1: जी बिल्कुल। तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं, और भारतीय सांकेतिक भाषा की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चों को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है, बहुत सरल से शब्दों में, कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए, साथ ही साथ

0: अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है इसी कड़ी में जुड़ता है, शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी
1: जी।
0: मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके।
1: जी
0: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा, इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा।
1: जी
0: जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्जवल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: हुणे तुसी NCERT स्पॉन्सर्ड उमंग सुन रहे सी।

हेलो फरमाइश, प्रोग्राम लैके परमिंदर थोड़ी सेवा च हाजिर। अज का यह प्रोग्राम खास तौर पर थोड़े सब लिए है। 0181-2342-173 नंबर डायल करके अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्मी गीत सुन सकते हो। जिमें कि साढ़े सुनने वाले जानते हैं कि एक मिठी प्यारी आवाज़ सुमन कल्याणपुर जिहड़े कल सानू सदीवी विछोड़ा दे गए ने, पर उन्हां वल्लों गाए हुए गीत रहिंदी दुनिया तक याद किए जाणगे।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा। लड़ीवार
0: नाटक होया।

हेलो फरमाइश प्रोग्राम तो सुन रहे हैं आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो यी वक् वक् मीटर्स ते लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी इस प्रोग्राम का आनंद माण रहे हो। वेब्स ऐप राही भी इस प्रोग्राम को सुनते हो तो डी टी एच की आकाशवाणी पंजाब सेवा से भी यह प्रसारण होंगे। बस ये प्रोग्राम थोड़ी पसंद का प्रोग्राम है इस करके क्योंकि ये फरमाइश पूरी की जाती है तो थोड़ी फरमाइश साढ़े तक पहुँचती है फोन कॉल के जरिए। फोन कॉल सिर्फ 181-2342173 तो हाँ कॉल बिल्कुल तैयार है पर उधर घड़ी दियां सुइयां भी बिल्कुल तैयार ने कहंदियां ने पहला ब्रेक लै लो फिर दोस्त नाल गलबात करांगे उन्हां दी फरमाइश पुछांगे कित्थों कौन केड़े गीत दी फरमाइश।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: सत श्री अकाल पंजाबियो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वालों सहभागी न्याय ते कर न्याय लई एक इतिहासिक पहल कीती गई है, जिथे मिलेगा तुहाडे केस नू तुरंत सम्मानजनक हल। हिस्सा बनो समाधान समारोह 2026 दा 21-22 ते 23 अगस्त नू सुप्रीम कोर्ट विच विशेष लोक अदालत लग रही है।
2: पर की उस दे लई मेनू दिल्ली जाना पएगा?
1: जरूरी नहीं, तुसी ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो।
2: अप्लाई किवें करिए?
1: सुप्रीम कोर्ट दी वेबसाइट www.sei.gov.in ते गूगल फॉर्म राही बेनती भेजो। याद रखो, आखिरी तारीख 31 मई 2026 है। सहायता लई 011-2311-2428 ते संपर्क करो।
3: ब्रेक तो बाद हेलो फरमाइश प्रोग्राम च बहुत बहुत स्वागत है। हेलो,
4: नमस्कार मैम जी।
3: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
4: पिंड कुलदीप तो मेरा बोल रहा जी।
3: कुलदीप जी, गाना केड़ा सुनना चाहोगे?
4: मैडम जी, गा साहब जिंदगी प्यार का गीत है, फिल्म आई सोतन।
3: लो जी, थोड़ी पसंद पेश कर रहे हैं। शुक्रिया कॉल दे ली।
4: धन्यवाद जी।

0: आकाशवाणी जलंधर ते सुन रहे प्रोग्राम हैलो फरमाइश सिप्रिक 81 43 173 है नंबर। किन्ने कॉल कीती है, केड़े गीत दी फरमाइश, कौन कितों आए ने, शामिल करते हैं। बहुत बहुत स्वागत जी, कौन बोल रहे हो?
1: सत श्री अकाल मैम।
0: सत श्री अकाल जी,
1: मैं पाली प्याला जिला हुशियारपुर।
0: गाना केड़ा सुनने पाली जी?
1: मैम जब जब फूल के ला दियो, परदेसियों से नाखियां मिलाना।
0: शुक्रिया जी कॉल दे ली। ला जी, इन्हां दी फरमाइश है फिल्म जब जब फूल खिले, मुहम्मद रफी होरां दी आवाज़। आपां इन्हां दी पसंद ते एगी जरूर प्ले करांगे।

0: सहजप्रीत कौर।
1: सहजप्रीत, केड़ी जगह तो कॉल कर रहे हो सहजप्रीत?
0: टाइटल
1: गाना केड़ा सुनना चाहोगे?
0: रेशम दी डोरिया टाइटल फिल्म का सॉन्ग।
1: ठीक है जी, शुक्रिया बहुत
0: हाँ
1: बहुत
0: जी,
1: कॉल दिले। लगता है कि सहजप्रीत ने आज पहली बार गल की है, ताइयों नू थोड़ा समझ नहीं लग रहा सी कि मैं रेशम की डोरी का टाइटल ट्रैक कहाँ कि रेशम की डोरी फिल्म का गाना कहाँ। तो रेशम की डोरी फिल्म का नाँ तो बोल दिता, तो मैनू लगता है कि गाना उही होना चाहिए जिदे बारे मैं थोड़ी देर पहला गल कर रही सी, सुमन कल्याणपुर जेड़े कल बीते दिन इस फानी दुनिया नू अलविदा कह के ने। 1960 तो लेके 70 के दरम्यान अपना करियर द बेस्ट दौर रहा। उस वेले लता मंगेशकर होरां दा जमाना सी, पर उस हवा दे विच भी अपनी पछाण नू बनाउणा कोई सौखा काम थोड़ी ना सी, पर फिर भी हिम्मत नहीं हारी ते हिट तो हिट सुपर हिट गाने दित्ते। मैं जिदा गल की रखड़ी दे त्यौहार के मौके पर गाना हमेशा ही बजता है, रेडियो ते भी बजता है, ते भैणां भी गा लैंदियां ने या भरा भी गा लैंदे ने। इस तो इलावा साथी फिल्म दा मेरा प्यार भी तू है ये बहार भी तू है मुकेश होरां दे नाल। बाद मुद्दत के ये घड़ी आई जहां आ रहा फिल्म दा गाना मोहम्मद रफ़ी होरां दे नाल। बुझा दिया है खुद अपने हाथों इस शगुन फिल्म दा गाना। ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने बात एक रात की फिल्म दा गाना। मैं ज़्यादा होर ना बोलना, तो जिहड़ी इन्होंने फरमाइश की है ना रेशम की डोरी फिल्म दा गाना, तो बहना ने भाई के कलाई से क्या किया सुन दिया।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ।
1: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ੀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा

0: पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह लोकभवन में आयोजित हो रहा है। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स आज नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के दूसरे संवाद की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार बैठक में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाने, सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने, रक्षा उद्योग में साझेदारी, सह विकास और सह उत्पादन के अवसरों पर चर्चा होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री लामिछाने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। उनका नई दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व सहित कई उच्च स्तरीय राजनीतिक और राजनयिक बैठकों में शामिल होने का कार्यक्रम है। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि ये सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजे गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम विपतन 77.6 मीटर या 873 किलो हर्ट्स, TRM 854 किलो हर्ट्स, FM 100.8 मेगा हर्ट्स, FM 100.9 मेगा हर्ट्स और DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। हुन पेश है प्रोग्राम तमक जलंधर पेंदी।

0: जदू जदू भी बने रे भुलका मैनू तेरे सोवे मेरे सजना।
1: गर्मी तो बचण दे लई देखो दोस्तो असी तां कई साधन लभ लैंदे आ पर बेजुबाना दे कोल कोई चारा नहीं हुंदा। ते जदों बनेरे ते एक कां कां कां बोल रहे ने जां चिड़ियां आके बोल रहियां ने ते तुहाडे कोल पानी दी मंग कर रहियां ने, इस चीज़ नूं समझो ते इक कटोरा पानी रख के उहनां दी प्यास नूं बुझाउण दा यतन जरूर करो। ते तुहाडी गीतां दी प्यास नूं असीं बुझा रहे हां, तुहाडे तक तुहाडी पसंद दे गीत पहुँचा रहे हां। ते हुण अगले गीत दी फरमाइश दे नाल बहुत सारी रली मिली फरमाइश साडे तक पहुँची है ते गीत शामप्रीत दी आवाज़ दे विच तुहानूं सुनावांगे। फरमाइश तुहाडे सब दी इस तरह, गुरमीत सिंह मीता साउथ टेंशन नवीं दिल्ली तो इन्होंने सानू मैसेज किया है। रेलवे रोड मोड़ मंडी तो बलजिंदर कैंथ, रोशन कैंथ, सिमरन हनी ते रबाब कैंथ ते करन आस्ट्रेलिया तो मैसेज कर रहे हैं। इस तरह करणवीर हाउस पुचो कैंचियां बठिंडा पंजाब तो, प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन ते अभिजोत हुना दा सानू मैसेज मिलिया है। ये मैसेज सानू मिलिया है धनौरी तेलीवाला तो, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू हुना दा मैसेज है। इस तरह मंडी अरनीवाला तो बलविंदर बुट्टर, गोरा बुट्टर, गुरसांझ बुट्टर, कुलदीप भुल्लर, मकैनिक हुना दा सानू मैसेज मिलिया है। ये मैसेज सानू मिलिया है, इन्होंने लिखिया है जी, मध्य प्रदेश तो मैसेज सानू मिलिया ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष हुना दा ये मैसेज सानू मिलिया। इस तरह अगला मैसेज सानू वासदेव छाबड़ा, अंश, दिव्यांश, चिराग, साजन छाबड़ा ते लालड़ू मंडी तो इन्होंने सानू मैसेज किया है। ये मैसेज सानू मिलिया जी फतेहाबाद हरियाणा पुरानी तहसील चौंक तो, इंद्रपाल बिट्टू, चंचलपुरी, आंचलपुरी, गगनपुरी, प्रिंसपुरी, जीवन सिंह बूक ते पूरा बूक परिवार पहुँचे।

जी दोस्तों, है ना, ये गीत हर एक दी याद दे विच वसिया होया, जां इंज कह लईए कि हर एक दी याद इस गीत दे नाल कोई ना कोई जरूर जुड़ी हुई है, चाहे वह उम्र दे किसी भी दौर दे विच है। क्योंकि अज कल दे चाहे ब्याह शादियां होन जां असी पुराने समय दे, ये गीत उदों भी वजदे सी ते अज भी इन्हां गीतां नूं अलग अलग रंग नाल अलग अलग ढंग दे नाल मानिया जांदा है ते हर कोई इस दे उत्ते नच्चण लई तैयार रहिंदा है। ते हुण प्रोग्राम दे विच तुसीं तैयार रहो अपनी फरमाइश नूं सुणन दे लई। बहुत सारे गीतां दे विच सानूं फरमाइश मिली है कुलदीप मानक साहब दे गाए गीत नूं सुणन दी, ते अगला गीत तुहाडे तक पहुँचावांगे उहनां दा गाया, ते फरमाइश तुहाडे सब दी रली मिली है। इस तरह

मीरा मोहल्ला पटियाला तो मुकेश बत्ता नीलम बत्ता नितिन पलक करण गीतू निहारिका हार्दिक ते वंश बत्ता होना दी ये मैसेज सानू मिलिया है जी लिखन वाले ने आदर्श नगर मलोट पंजाब तो राज शर्मा मीना शर्मा जोगेश शर्मा मैंडी शर्मा सौरभ शर्मा साइना शर्मा ते निवान शर्मा संतोष भाकरे सुनैना सुकन्या ते सविता भाकरे सानू शाहजी नगर दैगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र तो मैसेज कर रहे हैं। ये मैसेज सानू मिलिया जी जसपाल भारती वीना भारती सुरेंद्र मनदीप डिंपल युवराज हैप्पी शिवाए उन्हों का साउथ एवेन्यू अबोहर तो इन्होंने मैसेज किया है। मेन बाजार मंडी लादूका जिला फाजिलका तो वरिंदर कालड़ा रेखा कालड़ा प्रकिश्त कालड़ा प्राची टिंगरा ते पूरा कालड़ा परिवार पहुंचा जी संजय टिंगिया नमन टिंगिया अपार टिंगिया हुणी पहुंच गए ने बागपत उत्तर प्रदेश तो टालीवाला बोदला जिला फाजिलका तो अमीर चंद नवदीप चथरत अरनब चथरत लाजवंती ते अनीता रानी हुना दा मैसेज मिलिया है। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो मेहर अरोड़ा ममता अरोड़ा कीर्ति अरोड़ा भूमिका अरोड़ा हुना दा मैसेज सानू मिल गया। ये मैसेज सानू मिलिया सिद्धार्थ नगर दरियापुर भवाली तो गजानन येले नवदीप येले विशवदीप येले अशोक येले हुना दा फ्रेंड्स कलोनी करनाल तो गुरविंदर सिंह पांदा बलविंदर सोडी जश कुमार वर्मा मनविंदर सिंह पांदा हुना दा मैसेज मिलिया। चकला बाजार समाना शहर तो पप्पू राजा खुशदिल संगीता रानी जिंदल पप्पू समाइल खुशदिल हसमुख लाल जिंदल संजीव सुनीता बंटी जिंदल आरजू महक खुशदिल ते पूरा ही खुशदिल परिवार ते इन्हां दा मैसेज दे के साडा भी दिल जिहड़ा आ ओह खुश हो जांदा है क्योंकि रंग बिरंगे जिहड़े दिल पहला लाल रंग दे फिर हरे रंग दे मोर बना के ते फिर गुलाब लाल रंग दे किन्ने सारे प्रोग्राम दे विच साडे इस मैसेज दे राही साडे तक पहुँच जांदे ने। ते हुण अगला मैसेज है जी पिंड कबूल शाह खुब्बन जिला फाजिलका तो वधावा सिंह बलकरन तनु पवी जस्सी हुणा दा इह मैसेज है। इसे तरह यह मैसेज सानू मिलिया मेन बाजार मंडी लादूका जिला फाजिलका तो अनमोल चावला दीपिका चावला किरना चावला ते वारिस चावला होना दा पिंड बनवाला हनवंता फाजिलका तो विनोद मायल सीमा लक्षिता जसिका माता विद्या देवी ते सारा ही मायल परिवार आया है जी। सुखबीर सिंह कोमलप्रीत कौर रोशनप्रीत पिंड शाजली जिला संगरूर हुना तो साढ़े तक पहुँच गए ने जी। पिंड शाहपुर मैतपुर बूटा सिंह विजयपाल सिंह अजयपाल सिंह पहलजोत सिंह अनाहित कौर प्रीत कौर परविंदर कौर हुना दा मैसेज सानू मिल गया है। मक्खू तो बिल्ला बजाज हैप्पी कपूर फिरोजपुरी मनीष बजाज हुना दा मैसेज सानू मिलिया है। ये मैसेज सानू मिलिया है जी पूरा रम्मी हैबोवाल अपने पूरे परिवार दे नाल हैबोवाल कला हलका उत्तरी जिला लुधियाना पंजाब तो आए ने। ते इस तरह अगला मैसेज सानू मिलिया है जी हरजिंदर शिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता पिंड नथाना जिला बठिंडा तो इन्होंने मैसेज किया है। पिंड वड़िंग खेड़ा तो भोला सिंह सिद्धू पूरा सिंह गहलोत राजा सिंह वड़िंग ते बलजीत सिंह होना दा मैसेज मिलिया है। मेन बाजार हठूर तहसील जगराओं जिला लुधियाना तो इकबाल सिंह हठूर रजिंदर कौर इंजीनियर अमनदीप सिंह सिमरजीत कौर होना दा सानू मैसेज मिलिया है। तो हुण प्रोग्राम दे विच वधदे आं गीत दे वल गुरदास मान दी आवाज़ दे विच प्रोग्राम दा अगला गीत तुहाडे तक पहुँचा रहे हैं।

0: ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁੜ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਧਨ, ਅਹੁਦਾ, ਮੌਕੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਜਾ ਹਾਂਡਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ੀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के

0: नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने मंत्रिपरिषद के 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह का आयोजन कोलकाता के लोक भवन में हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में घोषित किए जाने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरों और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यवसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि ये सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजा गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 41 अंक बढ़कर 74,816 पर था, जबकि निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अब से थोड़ी देर पहले ये 23,551 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश कर रहे हैं प्रोग्राम वास्ते फिर एक

0: नमस्कार।
1: नमस्कार। प्रोग्राम बस दे बेड़े लैके हरप्रीत हाजिर है जी।
0: जी हरप्रीत नाल मैं पूनम भी हाजिर हाँ जी।
1: की हाल चाल है पूनम जी?
0: हाल चाल दुरुस्त ने जी। पहली तारीख है ते देखो जेड़िया हफ्ते दा भी पहला दिन है, वर्किंग डे है
1: जी।
0: ते बच्चियां ने छुट्टियां भी शुरू हो गईयां ने ते हुण छुट्टी दा माहौल एक असी आस पास अपने महसूस कर सकते हैं।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਹੜੇ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ 1 ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ੀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 सीट और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में

0: एक एक सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा, मतगणना भी उसी दिन होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रदान किए गए हैं। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपये से लेकर 53 रुपये 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। बॉम्बे एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक दोपहर तक 84 अंक गिरकर 74,692 पर और निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,516 पर आ गया। बिजली, पूंजीगत वस्तुएं, उपयोगिता और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President Oo Myint Aung Hlaing are holding bilateral talks in New Delhi. The talks aim to further strengthen the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, is likely to come up for discussions during their talks. The Myanmar President arrived in Gaya in Bihar on Saturday on a 5-day visit to India. He will also travel to Mumbai tomorrow for business and industry interactions and site visits. Our correspondent has the details.
2: The President of Myanmar will meet President Draupadi Murmu today evening at Rashtrapati Bhavan. He is also scheduled to visit to the Light and the Lotus, relics of the Awakened One exhibition at Rai Pithora Cultural Complex in the National Capital. The exhibition is showcasing the sacred Piprahavar relics associated with Lord Buddha along with significant associated antiquities. The official visit of the President of Myanmar to India is expected to further strengthen and deepen the multifaceted relations between the two countries. With Suparna Anupam Mish, Akashwani News, Delhi.
1: The India Oman
3: ਮੀਡੀਆ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 1:15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਬਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

0: गोयल ने भी कहा कि व्यापक आर्थिक भाईवाली समझौते तहत ओमान 98% टैरिफ ते फॉरन 100% ड्यूटी मुक्त बाजार पहुंच हासिल हो गई है। इस समझौते तो पहला भारत दिया बरामदा का सिर्फ 15.3% ही ओमान ड्यूटी मुक्त पहुंच सकता सी। देश भर में होटलों रेस्टोरेंटा ते होर कारोबारा वालों वरते जाण वाले 19 किलोग्राम व्यापारक LPG सिलेंडर दीयां कीमतां विच वाधा कीता गया है। हालांकि घरेलू वरतों विच आउण वाली घरेलू रसोई गैस दीयां कीमतां विच कोई बदलाव नहीं होया है। दिल्ली विच व्यापारक LPG सिलेंडर की कीमत 42 रुपये वधा दिती गई है ते हुण इसकी कीमत 3,113.50 रुपये होएगी। मुंबई विच इसकी कीमत 43.5 रुपये वधा दिती गई है ते हुण व्यापारक सिलेंडर की कीमत 3,067.50 रुपये होएगी। कोलकाता विच व्यापारक सिलेंडर की कीमत 53.5 रुपये दे वाधे नाल 3,255.50 रुपये होएगी। चेन्नई विच व्यापारक सिलेंडर दीयां कीमतां विच 42 रुपये का वाधा किया गया ते हुण इस दी कीमत 3,283 रुपये होएगी। व्यापारक LPG दीयां कीमतां विच ताज़ा वाधा अमरीका ते ईरान विचकार टकराव दरमियान पश्चिमी एशिया विच तनाव वधण करके ऊर्जा दीयां आलमी लागतां विच वाधे दे पिछोकड़ विच होया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रुड़की ने JEE एडवांस प्रीख्या के नतीजे ऐलान दिते ने। कुल 56,880 उम्मीदवार ने प्रीख्या पास की जिन्हां विच 10,107 विद्यार्थना शामिल ने। फुटबॉल विच भारत औरतों की सैफ चैंपियनशिप 2026 के सैमीफाइनल विच पहुंच गया है। भारतीय टीम ने कल गोवा के मारकाओ के पंडित जवाहर लाल नहरू स्टेडियम विच मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-0 नाल हरा के चैंपियनशिप के ग्रुप बी विच सिखर ते थां बना ली। प्यारी जाक्षा लिंडाकॉम ते मालविका पी ने 1-1 गोल किया। भारत हुण बुधवार को सैमीफाइनल विच ग्रुप ए दे रनर अप भूटान खिलाफ मैदान च उतरेगा। दूजे पासे बांग्लादेश दूजे सैमीफाइनल विच ग्रुप ए दे जेतू नेपाल खिलाफ खेडेगा। आखिर च खास खबरां एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन लाओ लाइन दरमियान नवी दिल्ली में दवली गलबात। 10 राज्यों तो राज्यसभा दी 24 सीटों लिए 2 सालों च होण वाली चोणों वास्ते नोटिफिकेशन अज जारी कर दिता गया है। पश्चिम बंगाल कैबिनेट का पसार 35 नवे मंत्रियों ने सौं चुकी। सुप्रीम कोर्ट में 5 नवे जजा की नियुक्ति। चीफ जस्टिस समेत जजा की कुल गिणती 37 हुई। भारत ओमान व्यापक आर्थिक भाईवाली समझौता अज तो लागू। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म होंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 ते होएगा। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में 2 तरफा बातचीत की है। भारत और ओमान के दरमियान जामे इक्तसादी साझेदारी समझौता नाफिज हो गया है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने 35 नए वजीरों को शामिल करके काबीना में तौसी की है। मई के महीने में GST की मजमुई वसूलियाबी बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जिसमें बरामदात से होने वाली वसूलियाबी में इजाफे का अहम रोल है। PM स्वनिधि स्कीम को 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मस्कूरा स्कीम से रेहड़ी पटली वालों के लिए तरक्की के नए मौके दस्तियाब हुए हैं। अमरीका ने ईरान में रडार और ड्रोन कंट्रोल मराकज पर हमले किए हैं, जिससे मगरबी एशिया खत्े में कशीदगी फिर से बढ़ गई है। और हांगकांग में 20 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 10 तमगों समेत 19 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में 2 तरफा बातचीत की है। इस बातचीत का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी राबतों को मजीद मुस्तहकम करना है। भारत और म्यांमार के दरमियान वसीतर शोबों में अच्छे ताल्लुकात हैं, जिनमें सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी शामिल हैं। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कल शाम नई दिल्ली में म्यांमार के सदर से मुलाकात की थी। म्यांमार के सदर ने म्यांमार भारत कारोबारी फोरम से भी खिताब किया था। वो भारत के 5 रोज़ा दौरे के तहत हफ्ते के रोज बिहार के गया पहुंचे थे। म्यांमार के सदर कल मुंबई भी जाएंगे, जहां वो कारोबारियों और सनअतकारों से बातचीत करेंगे और मुख्तलिफ मकामात देखने जाएंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: म्यांमार के सदर आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू

0: से मुलाकात करेंगे। उनका कौमी राजधानी के राय पिथौरा सकाफती कॉम्प्लेक्स में एक नुमाइश देखने का भी प्रोग्राम है। इस नुमाइश में गौतम बुद्ध से वाबस्ता पवित्र पिपरावा बाकियात को रखा गया है और उसके साथ साथ इससे वाबस्ता कुछ कदीमी चीज़ें भी नुमाइश के लिए रखी गई हैं। म्यांमार भारत की पड़ोस मुकदम मशरक़ी मुल्कों से रबते बढ़ाने और महासागर पॉलिसी के सिलसिले में अहम मकाम रखता है। सदर ऊ मिन ऑंगलिंग के भारत के दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर रुखिस ताल्लुकात के मजीद मुस्तकम होने का इम्कान है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: भारत ओमान जामे इकतसादी शराकत दारी मुआहदा सेपा आज से नाफिज हो गया है। कॉमर्स और तजारत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि यह मुआहदा दोनों मुल्कों के दरमियान इकतसादी और कलीदी राबतों को मुस्तहकम करेगा। एक कौमी रोजनामे में शाये एक मजमून में जनाब गोयल ने कहा कि इस मुआहदे से खासतौर से मुल्क के तलबा, दस्तकारों, खवातीन, किसानों, माहीगीरों और MSME इदारों को फायदा होगा और इसके तहत नए बाजारों तक रसाई मुमकिन हो पाएगी, बरामदात को फरोग हासिल होगा, सरमायाकारी रागिब होगी और रोजगार के मौके पैदा होने में तेजी आएगी।

प्रीडेटर ड्रोन को ईरान की जानिब से मार गिराए जाने के बाद अमरीका ने यह फौजी कार्रवाई की है। ईरान ने जवाबी हमला करने की बात कबूल की है और उधर कुवैत ने कहा है कि उसके फिजाई दिफाई निज़ाम के जरिए मिज़ाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया जा रहा है। हालिया हमलों से जंगबंदी के कमज़ोर होने का इशारा मिलता है। कशीदगी में लगातार इजाफा हो रहा है क्योंकि इसराइल ने लितानी दरिया से भी आगे तक लिबनान में अपना कब्जा बढ़ा दिया है। हांगकांग में 20 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 10 तमगों समेत 19 तमगे जीते हैं। इस तरह भारत ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया और मजमू एतबार से दूसरे मकाम पर रहा। भारत को चांदी के 5 और कांसे के 4 तमगे भी मिले। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 19 तमगे जीतने पर भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर ऊ मिन आउंग लाइन ने नई दिल्ली में दोतरफा बातचीत की है। भारत और ओमान के दरमियान जामे इकतसादी साझेदारी समझौता नाफिज हो गया है। मगरब बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने 35 नए वजीरों को शामिल करके काबीना में तौसी की है। मई के महीने में GST की मजमूई वसूलियाबी बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपये तक पहुँच गई, जिसमें दरामदाज से होने वाली वसूलियाबी में इजाफे का अहम रोल है। PM स्वनिधि स्कीम को 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मस्कूरा स्कीम से रेहड़ी पटरी वालों के लिए तरक्की के नए मौके दस्तियाब हुए हैं। और हांगकांग में 20 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 10 तमगों समेत 19 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: ਹੋਜੀ ਵੀਰੋ, ਫੁਕਰੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
2: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
3: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

0: माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताए, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में सपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफीन नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
1: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
2: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
3: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
4: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
3: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल

0: हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुंचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
2: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113 रुपये 50 पैसे होगी। मुंबई में 43 रुपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067 रुपये 50 पैसे होगी। कोलकाता में 53 रुपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255 रुपये 50 पैसे होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपये होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
4: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
1: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमार के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत

चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुँच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी का ये FM गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं इसे। और अब कार्यक्रम उन्नत किसान में स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं हूँ आपके साथ आरती।
1: और मैं हूँ आपके साथ राहुल।
0: जी बिल्कुल। और देखिए, हमारे किसान मित्रों की अगर हम बात करें तो जो धान की फसल होती है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होती है, क्योंकि एक बड़े क्षेत्र में उसे उगाया जाता है। बहुत से किसान इस खेती के साथ जुड़े होते हैं, तो धान से जुड़ी हुई जो बातें होती हैं, किस तरह से खेती कर सकते हैं, कौन कौन सी किस्में होनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, आज इसी विषय पर हम लेकर आए हैं, बातें होने वाली हैं।
1: क्योंकि आज का विषय है धान की उन्नत किस्में, नर्सरी और पोषक तत्व प्रबंधन। और जैसा कि आपने धान की बात की, महत्वपूर्ण फसल है और बहुत बड़े इलाके में इसकी जो है इसको उगाया जाता है, तो हमारे लिए ये भी जानना बहुत गौरवान्वित करने वाला होगा कि वर्तमान समय में भारत जो है धान का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है। बहरहाल, हम आपको ये भी बता दें कि आज हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर यशवीर सिंह शिवे जी। आप सहायक महानिदेशक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार जी, मेरी तरफ से भी सभी किसान बहनों भाइयों को नमस्कार।
0: और साथ ही आपको बता दें, फोन इन कार्यक्रम है जिसमें आप फोन करके धान से जुड़ी जो भी चीज है, अगर आपको खेती करने में कोई समस्या आ रही है या आप शुरू करना चाहते हैं या इस समय पे आपको क्या करना चाहिए धान से जुड़ा हुआ अपने खेतों में, इस विषय पे कोई पूछताछ करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप फोन कर सकते हैं 01 दिल्ली का स्टडी कोड, इसके बाद आप नंबर डायल करें 2342108 1। एक और फोन नंबर है
1: 2342108 3।
0: जी बिल्कुल। और राहुल, वैसे हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत अपने विषय पर आएं, इससे पहले एक और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज है।
1: बिल्कुल, आज है विश्व दुग्ध दिवस
0: जी,
1: और वर्ल्ड मिल्क डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम क्या, दुनिया कर रही है। और मैं चूंकि यहाँ पर डॉक्टर यशवीर जी भी हमारे साथ हैं, सर आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए। और मैं सर जब हम पढ़ते थे जनरल नॉलेज, तो एक हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था, मिल्क मैन ऑफ इंडिया का नाम बताइए, तो वो मुझे बस केवल याद है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम मुझे याद आ रहा है उस GK के क्वेश्चन की वजह से, कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन भारत के लिए।
2: देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर वर्गीस कुरियन जो थे मिल्क

0: चेयरमैन ऑफ इंडिया जाना जाता है
1: जी।
0: उन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत रिवोल्यूशन किया
1: जी।
0: और आज की डेट में हम सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं और कंजम्पशन भी करते हैं
1: जी।
0: दोनों तरीके से ही जो है मतलब वो हमारा इम्पोर्टेंस है दूध की। और इस तरीके से भी सोचने की जरूरत है क्योंकि मिल्क के जो
2: मीडियम वेब 347.6 मीटर या 873 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। हुन पेशे प्रोग्राम रंगली धरती। अज दे इस प्रोग्राम दे विच आओ सुखविंदर सिंह दे गाए लोक गीत सुनदे आं।

जी बिल्कुल, एमी विर्क दी खूबसूरत आवाज़ इस प्रोग्राम दी शुरुआत कर कीती है जी इस गीत दे नाल। ते लो जी हुन शुरुआत करदे हां तुहाडे खतां दे राहीं। लिख रहे ने पटियाला तो मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, हार्दिक, निहारिका ते वंश बत्ता कोई भी गीत सुनना चाहुंदे ने। पंचकुला सैक्टर 9 तो लिख रहे ने आशुचुक, अश्वनी, गोविंद, टोनी, लव, राधे ते भाविक। पटेल नगर मलौट पंजाब तो लिख रहे ने डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप ते बेबी आरजू। गुरु गोबिंद सिंह नगर पूछो कैंचियां तो लिख रहे ने प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करण वीर करण, दपिंदर वरिंदर, सिमरन, एकम, दमन ते अभिजोत। पेन कुणियाणा तो लिख रहे ने पोला स्वाग, डॉक्टर अमनजीत सिंह, सुखमंदर कौर, अमृतपाल कौर, गुरताज, अभिजोत, गुरतेश्वर, रहमत जोत ते दोस्त ने इन्हां दे नेहल, बंतेज, दीपा, मलकीत ते नाल इन्हां दे विनोद काठपाल। सुनना चाहुंदे ने कोई भी गीत ते कोई भी गीतां विचों लैके आए हैं जी मनजीत शौंकी दी आवाज़ विच। प्यारा जिहा गीत सुनदे हां।

मसीता डबवाली तो दर्शन लौट, सरगुन, इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर ते हनी लौट। मॉरल टाउन करनाल तो सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, किरण ठाकुर ते सारा परिवार। मलौट तो लिख रहे ने शमशीर सिंह, जसविंदर कौर, करणप्रीत, मनप्रीत ते नाली नदी, तरनवीर ते कोई भी गीत सुनना चाहते ने ते सुनते हैं जी। जोगिंदर सिंगापुरिया दी आवाज़ विच माइया।

सुन रहे जी प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। तो लो जी चिट्ठियां पढ़ लें जी। बड़े ही बेसब्री दे नाल इंतजार हो रहा होंदा है। लिख रहे ने आदर्श नगर मलौट तो राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ शाइना ते निमान शर्मा। कोई भी गीत सुनना चाहते ने। गिदड़बाह तो लिख रहे ने मनजीत तनेजा, परवीन पायल, बेबी हिनाशा ते बेबी कैरवी। आजाद नगर बक्सर हरिद्वार तो लिख रहे ने ताज मुहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही ते महराज जहां। पिंड नथाणा तो लिख रहे ने हरजिंदर चिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता ते गीता। कोई भी गीत सुनना चाहते ने डब वाली तो रजिंदर नारंग, अंजू ते मोहित नारंग। कोई भी गीत सुनना चाहते ने ते कोई भी गीतां विच चुन के लैके आई तुहाडे वास्ते बिलाल सईद दी आवाज़ विच गीत है। तुसी सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।

आई है, किसकी आई है, दस दिया जी। लिख रहे नहीं, उत्तर प्रदेश तो तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन ते अंकुश अरोड़ा। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी तो लिख रहे ने द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार ते जविंद्र कुमार ते सारा परिवार। हाजीपुर तो लिख रहे ने राज, बिमला, शारदा, के कौंडल, रजनीश कौंडल, आर के ते सारे पिंड वाले। वाह जी वाह, हुण पिंड वाले लै लैने सारे। अमरगढ़ तहसील सादुल शहर तो लिख रहे ने कुलवंत मान, लखविंदर कौर, खुशप्रीत, गुरनूर, हरविंदर, राजा सिंह, कुलविंदर कौर मान ते KS मान। बहुत ज़्यादा माण है जी सानू इना ते, इन्ना टाइम ला के जो है तुसी जो है साढ़े लिए या अपने लिए खत लिख दो, ते पूरा काम भी कर दे कर दे बार दे, ते पूरा टाइम निकाल के 3 to 4 यानी कि दोपहर दे 3 to 4 तुसी सुन दे जी प्रोग्राम DTS ते या न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। पुरानी मंडी मुलापुर तो लिख रहे ने रजेश जैन, अरुणा जैन, अभिषेक, गौतम, रसगुल्ला ते नगीना जैन ते सारा परिवार। पुरानी मंडी मुलापुर तो कृष्ण गोपाल शर्मा, बीटू जैन, टीटू जैन ते JB राव ते सुनना चाहते ने अमरिंदर गिल की आवाज़ में कोई भी गीत, ते सुन दें जी इस प्यारे जगीत नूं, तुसी सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।

सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो लिख रहे ने टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप ते नाल इन्हां दे शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज ते साहिल कोई भी गीत सुनना चाहुंदे ने। रायण जिला श्री गंगानगर तो लिख रहे ने डॉक्टर बनवारी जयपाल, उर्मिला, सोनू, ममता, मोक्ष, दिशा, सुशांत, विक्रम ते सारा परिवार। नाभा तो लिख रहे ने सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी ते गुरमंत। ते लो जी इन्हां सारे दी फरमाइश ते सुना रहे हैं जी तुहानू बहुत ही प्यारे जी गीत है प्रभ गिल दी आवाज़ विच, प्यार तेरे दा असर है जी। बिल्कुल इस प्रोग्राम दा असर जी बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि तुसी खतां ते राहीं अपना प्यार दिखांदे हो, उन्हूं खत नूं एक सिंपल जे खत नूं इन्ना सजा के तुसी भेजदे हो, यानी कि समा कढ़दे हो इस प्रोग्राम दे लई, सुणदे भी हो ते चिट्ठियां लिखण दे लई इन्ना समा कढ़ लैंदे हो कई वार कि तुसी एक वार च 10-10 खत इक्को वार भेज दिंदे हो। इदां ना करिया करो, सानू जो है खतां नूं पढ़न च थोड़ी जी प्रॉब्लम आउंदी है ते बार बार उही जो है खत सानू मिलदे ने जब तुसी खत सारे भेजदे हो। ते सारे तो गुजारिश है कि इक्को वारी च एक ही खत भेजिया करो। ते खत भेजन दा किसी दी आवाज़ आई है कि पता नोट करा दो जी। बिल्कुल प्रोग्राम दा नां है चिट्ठियां मिठियां, मार्फ स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी जलंधर, पिन कोड 144001 ते दूजे पासे अपना नां, अपनी जगह दा नां ते गीत दे बोल लिख के सानू भेज दिओ। भाई छोटा जा काम करना है, उस तो बाद आपां तुहाडा जो है नां पढ़ांगे, दोस्तां दा नां पढ़ांगे ते तुहाडे भेजे हुए जो गीत ने वो भी जो है प्ले करांगे। ये छोटे जे काम कर करके तुसी जो है इस प्रोग्राम में शामिल होंदे रोज़ दे रोज़। तो अपने दोस्तों मित्रों नूं भी क्या करो कि दोपहर दे 3-4 जो है प्रोग्राम आउंदा है जी DTH दी पंजाबी प्रसारण सेवा ते चिट्ठियां मिठियां। तो मैं जी तुहाडी दोस्त कृतिका कौशल ते सुनदे हां जी इस गीत नूं प्रभ गिल दी आवाज़ में।

नज़र नज़र का फ़र्क होता है जनाब, किसी को हुस्न तो किसी को सिर्फ सादगी भाती है। खुश नसीब होते हैं वो लोग इस दुनिया में जिन्हें अपनी मोहब्बत की आंखों में जन्नत नज़र आती है।

तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कौ नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाउ न जाने मेरा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी समग्र बाणी विच प्रभु दी सिफतो सलाह है, उस्तत है। सर्ब कला समर्थ अकाल पुरख प्रभु दे चरणा विच बेनती है, उस दे गुणा दा वर्णन है। प्रभु ते जन दा रिश्ता प्रभु ते सेवक दे रिश्ते वांग है, क्योंकि सच्ची सेवा प्रभु दे हुकम अनुसार उही जन कर सकते हैं जिड़े प्रभु दे हुकम मुताबक चलते ने। इतना ही संभव हुंदा है जदों वो बेअंत गुणा दे स्वामी, सर्व शक्तिमान, सर्व व्यापक, सर्व कला समर्थ अकाल पुरख प्रभु दे चरणा विच जोदड़ी करते हैं। राग वढ़हंस विच उचारित शब्द विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी दासा भाव विच आके ए अरजोई करते हैं। सेवक की अरदास प्यारे, जब जीवा प्रभ चरण तुम्हारे। सरवण करदे हां भाई प्रभजोत सिंह बाली ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

0: सेवक की अरदास प्यारे, जब जीवा प्रभ चरण तुम्हारे। इस शब्द अगायन कीता सी पाई प्रभजोत सिंह बाली ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। अकाल पुरख प्रभु दे हुकम नाल, अर्थात एक गवाओ दे नाल सृष्टि दा पसार हो गया। गुरबाणी विच बयानिया गया है, कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ, कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। अर्थात इस सारा पसारा जिसनू बयान ही नहीं कीता जा सकता, ते इस सृष्टि दे पसार करन वाले दा अंत भी नहीं लख्या जा सकता। उस दे अग्गे तां नतमस्तक होना ही बनता है, ते यही कहना बनता है, तुमरा लखा न जाए पसारा। सुनदे हां सुखजीत सिंह हुरां पासों ए वार्ता।
1: संसार अंदर अनेकां धर्म हन, हरेक धर्म ने सृष्टि की उत्पत्ति कदों किवें होई दे बारे अपने अपने विचार दित्ते हन। सिख धर्म दे बानी गुरु नानक साहब ने इस संबंध विच दस्या है कि सब तो पहला परमेश्वर ने अपने आप नूं प्रकाशमान कीता, फिर परमेश्वर ने

0: करें पसाओ, तू जानोई सब सै, दे लैसें जिंद कवाओ, कर आसन डिठो चाओ। संसार दे दिसते पसारे संबंधी लोकां विच ये ख्याल आम प्रचलित सी कि इकली माया किसे जुगती नाल प्रसूत होई ते प्रतख तौर ते उसते तीन पुत्र पैदा होए, उन्हां विच्चों एक ब्रह्मा कारबारी भाव जीव जनता नूं पैदा करन लग पए, दूजे विष्णु भंडारे दे मालक बन के जीवां नूं रिजक भेजण दे काम विच लग पए, अते तीजे शिव जी अपनी कचहरी ला के जीवां नूं संघारन भाव नाश करन दे काम विच लग गए। पर गुरु नानक साहब इस प्रचलित ख्याल नाल सहमत ना हुंदे होए अपना मत प्रगट करदे हन कि जेकर मन लिया जावे कि ऐसा ही हो रहा है तां इन्हां तीन देवतियां नूं पैदा करन वाला तां प्रभु आप ही है। सो असल गल यह है कि जिवें उस अकाल पुरख नूं पाउंदा है अते जिवें उस दा हुक्म हुंदा है तेवें ही वो आप ही संसार दे पसारे दी सारी कार नूं चला रहा है। पर एक ऐसा कौतुक है कि वो अकाल पुरख अपने हुक्म में चल रहे सारे जीवां नूं वेख रहा है पर जीवां नूं अकाल पुरख नहीं दिसदा। इस बरथाए जपजी साहब दी बाणी विच गुरु नानक पातशाह जी दे बचन असीं पढ़दे हाँ, एका माई जुगत व्याई तीन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान, जिव तिस पावै तिवें चलावै, जिव होवै फुरमान, ओ वेखै उन्ना नदर ना आवै, बहुता एह विडान, आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत, वाले पसारे नूं प्रभु वल्लों किवें साजिया गया। दे संबंध विच जदों असीं गुरबाणी दी रोशनी विच समझण दा जतन करदे हाँ तां साडे सामणे हुक्मी होवण आकार, हुक्म ना कहिया जाई, हुक्मी होवण जी हुक्म मिलै वडियाई दे बचन आउंदे हन। इस विशे दे खोज मार्ग उपर चलदे चलदे साडी हैरानी हद्दां बन्ने पार कर जांदी है। इस अवस्था लई आसा की वार बाणी अंदर पहले पातशाह जी ने विस्माद शब्द वरत्या है, साहबां दे अमोलक बचन हन, विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिरै जंत, विस्माद पौन विस्माद पाणी विस्माद अग्नि खेडें वेडाणी, विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगै प्राणी। गुरु साहब कुदरत दी बेअंत विशालता दा लगातार होर वर्णन करदे होए इस श्लोक दी समाप्ति ते इस सारे पसारे संबंधी वेख विडान रहिया विस्माद नानक बुझण पूरे भाग नाल सिद्धांत स्पष्ट करदे हन कि इस इलाही तमाशे नूं वड्डे भागां नाल ही समझिया जा सकता है। विशा अधीन विचार तो असीं यही सिट्टा कढ सकते हाँ कि इस सारे पसारे नूं पसारन वाला अकाल पुरख आप बेअंत है, उस दे हुक्म नाल साजी हुई कुदरत भी बेअंत है। उस दी बेअंतता नूं पूर्ण रूप विच जानन दियां किसी भी तरह कोई दावेदारियां करन दी थां ते सानू भी गुरु नानक साहब दे पावन बचना अनुसार यही आखना बनता है, कुदरत कवन कहां विचार, वारिया न जावां एक वार, जो तुद पावै साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार।
1: तुमरा लखा न जाए पसारा, ये वार्ता सुना रहे सन सुखजीत सिंह। अकाल पुरख प्रभु सब तो वड्डा है, अर्थात सिरमौर है, स्याणा है, दयानतदार है, गल की अनेकां गुण हन जिहड़े बयान ही नहीं कीते जा सकते। बस उस दी

दाना साहेब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा। इस शब्द का गायन कीता सी भाई कमलजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने

0: तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: of our shared future.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। LPG आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, जबकि 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतिव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का अंतिम संस्कार आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। उनका निधन कल रात मुंबई में हुआ था। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। हुण एक विशेष सूचना, असी अपने स्रोतियां नूं दस दईए कि अज यानी 1 जून 2026 तो लैके 21 जून 2026 तक रोज़ शाम 7:10 तो लैके 10:45 तक तुसी साडे दिल्ली केंद्र तों एक विशेष प्रोग्राम सुनिया करोगे, गरीब कल्याण। इस करके जो पंजाबी खबरां दा बुलेटिन तुसी रोज़ शाम 7:30 सुणदे हो, उह बुलेटिन अज यानी 1 जून 2026 तो लैके 21 जून 2026 तक शाम 7 सुनिया करोगे। ते लो हुण सुणो साडे अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां।

शाम 6:30 बजे सुनोगे देहाती प्रोग्राम। अज दे इस प्रोग्राम विच कम दियां गल्लां, मौसम दा हाल, कल दे प्रोग्राम ते लड़ीवार नाटक देस होया पराया दी नौवीं कड़ी सुनाई जाएगी।

रात 10:30 बजे चंद गजलां समात फरमाओगे। हिंदी ते अंग्रेजी खबरां आपो अपने समय मुताबक नशर कीतियां जाणगियां। इस साडे अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां। आओ हुण सुणदे हां इक समूह गाना।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन मैं अमन देव। पहला चुनावी खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन ऑनलाइन ने नवी दिल्ली में गलबात की है। दोवें नेतावों ने दुवल्ले संबंधों मजबूत करने बारे चर्चा की। खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले तो देशव्यापी खेत बचाओ मुहिम की शुरुआत की। उन्होंने किसानों रसायणिक खादों की वरतों सीमित करने की अपील भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2026 की मुड़ प्रीख्या मौजूदा पेन ते पेपर फॉरमेट की बजाय कंप्यूटर आधारित प्रीख्या वजो कराने की मांग करने वाली एक पटीशन खारिज कर दिता है। मई महीने वस्तु ते सेवा टैक्स का कुल संग्रह 3.2% वध के 1,94,000 करोड़ रुपए तो वध हो गया है। तो भारत ने होंगकोंग हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलैटिक्स चैंपियनशिप में सोने के 10 तमगे समेत कुल 19 तमगे जीते ने। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन ने नवी दिल्ली में दुवल्ली गलबात की। दोवें नेतावों ने इतिहासक और सभ्यागत संबंधों को होर मजबूत करने बारे चर्चा की। गलबात दौरान दोहां देशों विचकार सुरक्षा ते संपर्क समेत सारे पहलुओं पर चर्चा की गई। म्यांमार के राष्ट्रपति शनिचरवार को भारत के 5 दिन दौरे पर बिहार के गया पहुंचे सन। उन्होंने नाल एक उच्च पदरी वफद भी है जिस विच कई कैबिनेट मंत्री सीनियर अधिकारी ते कारोबारी आगू शामिल ने। वो कल मुंबई भी जाएंगे जिथे वो व्यापार ते उद्योग के आगुओं नाल गलबात करनगे। गलबात तो बाद विदेश सकत्र विक्रम मिसरी ने नवी दिल्ली में पत्रकारों को दसिया कि दोवां धिरां ने व्यापार ते निवेश विकास सहयोग सेहत सिक्ख्या ते ऊर्जा के खेतरां विच नेड़ले सहयोग नूं उत्साहित करने विच दिलचस्पी

0: Yes, which has actually now become a very significant add-on. So there's been a lot of what we should say cascading impact of the Ujjwala benefit. As you would have noticed, that what has happened is that this has also led to a very strong financial security in those households. So together, it has been a very impressive package of reforms that have been delivered, impressive package of benefits that have been delivered. Yes.
1: एब्सोल्युटली शुभमय अदिति, शुभमय अभी बात कर रहे थे किस तरह से ये बीपीएल हाउस होल्डर को खास करके उज्ज्वला योजना ने बेनिफिट पहुंचाया है, रूरल वेमेन फोक को खास करके उन्होंने चर्चा की कि किस तरह से स्मोक लेडन हमारा किचन हुआ करता था और सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ अगर हम बात करें वो है जल जीवन मिशन का, टैप वाटर। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे खास करके भारत देश में सीजनल रेन्स एंड ऑल यू नो एंड वाटर बोर्न डिजीजेज, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता था। जल जीवन मिशन एक ऐसा एक स्कीम मतलब ये लेकर आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जहाँ पर कि हर घर नल योजना की शुरुआत की गई। कैसे देखते हैं आप, खास करके अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ को प्रायोरिटी देने की बात करें तो?
2: ये बहुत एक महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, जिसके तहत सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है एक हाउस होल्ड की महिला को, क्योंकि हम जानते हैं कि इतने साल हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को, लेकिन फिर भी अभी भी इतने सारे हाउस होल्ड्स ऐसे थे रूरल एरियाज़ में, ये रूरल हाउस होल्ड्स को जोड़ने की स्कीम है ज़्यादातर, और इतने सारे हाउस होल्ड्स थे कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते थे, पढ़ते थे। आज तक ऐसी खबरें छप रही थी कि 8-8, 9-9 घंटे तक लोगों को चल के जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, या बहुत किलोमीटर्स का सफ़र तय करके दूर दराज इलाकों में लोगों को जाना पड़ता है। जो हिली टेरेन्स हैं उसमें पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, जो डेजर्ट एरियाज़ हैं खासकर जैसलमेर, राजस्थान और गुजरात, कच्छ के साइड में बहुत सारे ऐसे हमें एविडेंस मिलते थे कि जहाँ पानी की समस्या इतने साल बाद भी आज़ादी के, मतलब ये एक किसी भी देश के लिए कोई अच्छी कन्वीनियंट स्थिति नहीं है, कन्वीनियंट पिक्चर नहीं है कि आप एक बेसिक सुविधा, जैसे आप पावर की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए, या पानी की बात कर लीजिए, टॉयलेट्स की बात कर लीजिए, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आम तौर पर अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से जो नहीं हो पाई। और आपने सही कहा कि अगर आप स्वास्थ्य लाभ भी देखें इस योजना से, तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है, और इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, बहुत लोगों ने बहुत सारे रिसर्च और एविडेंस बेस्ड पेपर्स भी निकाले हैं, जिससे ये भी कहा है कि इससे जल जीवन मिशन की वजह से बीमारियों में बहुत कमी आ रही है, चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स इम्प्रूव हो रहे हैं, महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति इम्प्रूव हो रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट, गर्भवती महिला के लिए ये एक बून की तरह आया है, क्योंकि बहुत सारी वाटर बोर्न डिजीजेस, गर्भवती महिला को गंदे पानी की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता था, और जल जीवन मिशन से क्या हुआ है, ना सिर्फ पेयजल घर तक गया है, बल्कि बहुत सारी, मतलब प्रोडक्टिव टाइम जो महिला का पानी इकट्ठा करने में जाता था, वो अब और चीज़ों में वो व्यस्त हो सकती है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर बन सकती है, वो लखपति दीदी योजना का लाभ उठा सकती है, क्योंकि उसके पास अब वक्त है, घर में पानी आ रहा है। ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन बहुत बड़ा प्रभावी कदम है।
1: जी अदिति, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ें। शुभमय, सैनिटेशन की अगर बात करें, स्वच्छ भारत मिशन ये एक फ्लैगशिप मिशन जिसे कहें, और जब भी इसे इम्प्लीमेंट किया गया था उसके पहले शायद पता नहीं इस तरह की योजना कभी सुनने को नहीं मिली थी। सैनिटेशन की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन जिसे ओपन डेफिकेशन एलिमिनेट ऑलमोस्ट कर दिया गया, मास कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स, ये कोई छोटी बात नहीं है। शुभमय, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
0: हाँ, ये वाला चीज जो आप देखेंगे
1: जी
0: कि पानी का सप्लाई, स्वच्छ भारत मिशन, इन सभी चीजों से जो बदलाव अभी दिख रहा है वो है काफी सिग्निफिकेंट। आप इसके पहले एक आम बात थी कि बहुत सारी जगहों पे ओपन डिफिकेशन और उससे चलते जितने सारे तरह की बीमारियां, उनका खासकर मानसून में फैल जाना, बाकी समय में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें एक आम सरफ चीज था कि भाई होता है, क्या किया जाए। इसमें जो अभी जो नेशनल हेल्थ सर्वे के जब डेटा देखेंगे, तो सबसे बड़ी बदलाव आप उस डेटा से देख सकते हैं कि ये एक से कहते हैं आपका एक एक मेजरमेंट आ गया है कि कितना और कितना प्रभावी ये सारे बदलाव हुए हैं। अभी आप, मैं आग्रह करूंगा कि कोई आकाशवाणी के जो लिसनर्स हैं, कभी अगर वो ट्रेन का सफर करे, दूर दराज के रास्ते में चलते हुए, एक जो कॉमन साइट था ओपन डेफिकेशन का, वो करीब एकदम वैनिश हो गया, और ये बहुत ही बड़ा बदलाव है। इसमें टाइम लगा, इसमें करने में

0: दूसरे लेवल पे 20 से 25 हज़ार कर दिया गया है और फाइनल लेवल जो है वो 50 हज़ार है। और इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को जो टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं। प्लस एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस स्कीम का बिंदु है वो ये है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको कैशबैक इंसेंटिव भी दे रही है ये स्कीम। तो अभी तक अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 78 लाख 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पूरे देश में हैं जो इसमें लाभान्वित हो चुके हैं और करीब 17 हज़ार करोड़ तक का जो लोन है वो दिया जा चुका है। 122 लाख लोन्स दिए जा चुके हैं करीब 17 हज़ार करोड़ के।
1: राइट अदिति, लेट्स टॉक द वुमेन फोक लखपति दीदी अभियान। ये लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी और 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी है, कुछ बताएं इसके बारे में।
0: जी, ये एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की। और किसान सम्मान निधि की जो बात हुई उसमें बस छोटी सी एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि जब ये अमाउंट तय हो रहा था तब एक स्टडी करवाई गई थी कि फार्मर्स का कॉस्ट इनपुट क्या है, उनकी कॉस्ट कवर करने का ये कवायद है जो 6,000 की रकम तय की गई है। ऐसा पाया गया कि अगर ये दे दी जाए तो एटलीस्ट उनका जो इनपुट है वो कवर हो जाएगा। इस वजह से ये 6,000 पे तय हुई थी। पर अब जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बहुत सारे वक्तव्यों में ये कहा है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ होंगे, जिसमें से पहले हम चर्चा कर चुके हैं गरीबों की, उसके बाद हम चर्चा कर चुके किसानों की, तीसरा यूथ, आपने स्टैंड अप इंडिया की बात की, और अब चौथी आप बात कर रहे हैं महिलाओं की। ये 4 स्तंभ हैं। जब तक आप इनको फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करते तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप विकसित भारत के गोल को अचीव कर पाएं। जिसकी वजह से ये हुआ है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूवमेंट इस देश में चल रही है। करीब 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस वक्त कार्यरत हैं। उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं जो भाग ले रही हैं, लखपति दीदी योजना उसके तहत ये कोशिश कर रही है कि हर महिला 1 साल में 1 लाख रुपए अपने बलबूते पर कमा सके। उसमें तरीके तरीके के प्रावधान किए गए हैं, जैसे ड्रोन दीदी का प्रोग्राम भी उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। कुछ महिलाएं ड्रोन दीदी प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर खेतों में ड्रोन के माध्यम से मतलब पेस्टिसाइड्स छिड़काव कर रही हैं या और बहुत चीज़ें कर रही हैं। सिमिलरली कुछ लोगों को आप हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं। इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है, फिशरीज़ में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं महिलाओं को। उनका फाइनेंशियल जो इक्वेशन है, फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है, उसको बढ़ाने की कवायद है। और एक चीज़ की वर्ल्ड बैंक की अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी जिसको हम जिनी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, वो देशों को मापती है इस माध्यम से कि कितनी इक्वल सोसाइटीज़ हैं और जो फ्रूट्स ऑफ पावर हैं वो कितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लोगों में। ये जितना कम होता है इसका वैल्यू, उतना एक सोसाइटी को इक्वल माना जाता है। तो वहाँ मैं पढ़ रही थी कि भारत का जो वैल्यू है जिनी इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक की, वो 25.5 है और चाइना का 35.7 है और US का 41.8 है। कहने का मतलब है कि ये जो सरकार ने एक लैंडस्केप तैयार किया है वेलफेयरिज्म का, इससे ये प्रूव हो रहा है। और ये थर्ड पार्टी ऑडिट है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं या सरकारें नहीं कह रही हैं यहाँ बैठकर, ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी कह रही है कि भारत में अब धीरे धीरे वेलफेयर बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं। और जैसा आपने अपने वक्तव्य में कुछ देर पहले कहा कि एक्सट्रीम पावर्टी जिसका मेजर क्या है, उसका मेजर है कि $3 से कम पर प्रतिदिन कितने लोग इस देश में रहते हैं। उसकी जो संख्या है वो 16.2% 2011-12 में थी और अब घट के 5.3% रह गई है। तो धीरे धीरे एविडेंस क्रिएट हो रही है। इसी वजह से बहुत सारी एजेंसीज जो सरकारी ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी अपने एविडेंस बेस्ड पेपर्स में ये कह रही है कि भारत अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां उसको विकसित भारत बनने के लिए जो मैकेनिज्म्स चाहिए थे वो इन प्लेस हैं। विकसित भारत का क्या मतलब है? विकसित भारत का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है हमने अपनी। अभी हम लो मिडिल इनकम कंट्री के कैटेगरी में हैं, हमें हाई इनकम कंट्री बनना है 2047 तक। वो बनने के लिए चर्चा की है आपने, जिन तबकों की, उनको आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाना है, उनको एम्पावर
1: करना है। राइट राइट, थैंक यू सो वेरी मच शुभमा आदिति, बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग जॉइंड अस एंड शेयर्ड योर व्यूज ऑन द टॉपिक। थैंक यू सो वेरी मच।
0: थैंक यू।
2: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर। इसमें भाग ले रहे थे

0: आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@nsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: In the special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government, key welfare schemes and their grassroots impact. Participants were Shubhamoy Bhattacharji, economic analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Nishit Kumar. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

बताता है। ऐसा कर्म बंधन नहीं बनता बल्कि मुक्ति का साधन बन जाता है। इस तरह योग एक ऐसी साधना पद्धति है जिससे स्वस्थ तन एवं मन की प्राप्ति होती है। योग प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों एवं दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित एक विशिष्ट आध्यात्मिक प्रक्रिया है। महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा है और इसके अष्टांग अर्थात 8 अंग बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग वशिष्ठ के अनुसार योग वह युक्ति है जिसके द्वारा संसार सागर से पार पाया जा सकता है। योग एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना से जोड़ने का कार्य करता है। भारत ने अपनी आध्यात्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक सोच से योग के माध्यम से दुनिया को अमूल्य धरोहर प्रदान की है। भारत ने शून्य की तरह ही विश्व को योग रूपी अमूल्य उपहार दिया है। सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त देवी देवताओं की मूर्तियां एवं मोहरें भारत में योग के महत्व को प्रतिपादित करती हैं। इसके अतिरिक्त वैदिक और उपनिषद परंपरा, शैव, वैष्णव तथा तांत्रिक परंपरा, भारतीय दर्शन, रामायण, महाभारत, भगवत गीता तथा बौद्ध और जैन परंपरा में योग का महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है। प्राचीन काल से भारतीय सांस्कृतिक सभ्यता बहुत समृद्ध रही है। विश्व के कई भागों में इसका प्रचार और प्रसार हुआ। देश के महर्षियों द्वारा योग का भी वैश्विक स्तर पर विस्तार हुआ है। योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जो मनुष्य के भीतर अंतर्मन की शांति और आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य करता है और उसकी चिंतन मनन करने की शक्ति को भी अभिवृद्धि प्रदान करता है। आज योग वैश्विक स्तर पर योग चिकित्सा का विषय बन चुका है। योग से जीवन का तनाव, अवसाद समाप्त कर कई प्रकार की शारीरिक बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। इन्हीं गुणों को देखते हुए संपूर्ण विश्व में योग के प्रति जागरूकता बढ़ी है। आज दुनिया के सभी देश योग को किसी न किसी रूप में अपना रहे हैं। अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका के देशों के अतिरिक्त इस्लामिक देश जैसे ईरान, पाकिस्तान और अरब आदि कई देश योग के महत्व को स्वीकार कर इसे अपना रहे हैं। आज संपूर्ण मानव जाति आधुनिक जीवन शैली के कारण कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही है। शारीरिक क्रियाशीलता के अभाव के कारण लोग बीमारी, निराशा, मनोविकार और अवसाद जैसी गंभीर समस्याओं से पीड़ित हैं। युवाओं में आत्मविश्वास और आत्मबोध की कमी दिखाई पड़ रही है, पर योग हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को सही कर स्वास्थ्य प्रदान करता है। योग दुनिया में व्याप्त निराशा, तनाव और चिंतन को दूर करने के साथ साथ वैश्विक एकता को बढ़ावा देता है। योग चैतन्यता की स्थिति में सुधार कर वैश्विक स्तर पर शांति, एकता और अखंडता की भावना पैदा करता है। योग सभी प्राणियों को एक साथ जोड़ने और सौहार्दपूर्ण जीवन जीने की राह दिखाता है। योग आत्मविश्वास में अभिवृद्धि कर लक्ष्य निर्धारण में सहायता करता है। योग व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। भारतीय संस्कृति की महान देन योग को वैश्विक स्तर पर विस्तार और महत्व देने के लिए 27 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में विश्व समुदाय से एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने की अपील की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। ये दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार, संयम और पूर्ति को प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। यह केवल व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना,

0: दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आएं एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने की दिशा में हम काम करते हैं। इस प्रस्ताव को भारी समर्थन मिला। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। भारत के इस प्रस्ताव को 90 दिनों के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया। जो किसी प्रस्तावित दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित करने के लिए सबसे कम समय है। भारत में 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े पैमाने पर पूरे जोर शोर से मनाया गया। योग दिवस का मुख्य समारोह दिल्ली के राजपथ पर मनाया गया, जिसमें खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। प्रधानमंत्री और गणमान्य लोगों सहित लगभग 36,000 लोगों ने 21 जून 2015 को पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 35 मिनट तक का 21 योग साधनों का योग आसनों का प्रदर्शन किया। योग दिवस दुनिया भर के लाखों लोगों द्वारा पूरे उत्साह से मनाया गया। राजपथ पर हुए समारोह ने 2 गिनीज रिकॉर्ड भी बनाए। पहला सबसे बड़ी योग क्लास 35,985 लोगों के साथ और दूसरा 84 देशों के द्वारा इस आयोजन में एक साथ भाग लेने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। संयुक्त राष्ट्र में भी योग दिवस मनाने के लिए बहुत तैयारियां की गईं। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र में आयोजित समारोह की अध्यक्षता की। हर साल 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए योग के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाता है, क्योंकि योग में जन कल्याण की भावना निहित है। यह विविधता में एकता से मानव मन के भीतर मानव एकता की भावना को उत्पन्न कर लोगों में संगठित बल प्रदान करता है, जिससे सब लोगों में वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण विश्व एक परिवार है और सर्वे भवन्तु सुखिना अर्थात सभी सुखी रहें इसकी भावना उत्पन्न करता है। इसलिए प्रसिद्ध शायर अलामा इकबाल ने सही कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। क्योंकि भारतीय संस्कृति का आधार योग माना गया है, जो इसे चिरंतन रूप देता है।
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋ ਦੇਨ ਯੋਗ। ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮ ਜੁਲਕਾ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

तो आज आगाज करते हैं प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी ज्यादा दूसरा नाम है मेहनत, क्योंकि सानू जिंदगी विच मेहनत करना ही अगे बढ़ना पैंदा है, क्योंकि मेहनत कदे भी व्यर्थ नहीं जाती। एक ना एक दिन जरूर रंग लियांदी है ते सानू फल जरूर दिंदी है, क्योंकि जिंदगी विच वड्डियां मंजिलां उही पांदे ने जो कदे हार नहीं मनदे, मेहनत करदे हुए अगे ही वधदे जांदे है, क्योंकि हर दिन एक नवा मौका लैके आंदा है और नवे मौके नू मेहनत नाल ही असी जित सकते हैं, कुछ ना कुछ पा सकते हैं, क्योंकि मुश्किलां इंसान नू कमजोर नहीं करदियां, मजबूत बनाउंदियां ने, और मजबूत बनने वास्ते सानू अपने आप मेहनत करके अगे वधना।

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जी हाँ, आकाशवाणी जलंधर तो सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है, और जिंदगी विच कामयाब होना बहुत जरूरी है। कामयाबी हर एक लिए बहुत जरूरी है, और इस कामयाबी दे ताले दी जड़ी चाबी है वो है मेहनत। जी हाँ, कड़ी मेहनत इस ताले नू खोल दिंदी है और सारियां राहां आसान कर दिंदी है। और जिंदगी विच उच्चा उड़ना है तो हौसले तो मजबूत होने ही चाहिए ना। और जिंदगी दी राह चलदे चलदे अगर कदी डिग जाइए, कदी कोई रुकावट आ जाए, तो वो गलत नहीं, डिगना गलत नहीं है, पर डिग के ना उठना वो गलत है। क्योंकि मंजिल उन्हां नूं मिलदी है जो सफ़र तो नहीं डरदे, हमेशा चलते रहेंदे, अगे वधदे रहेंदे है। क्योंकि हर छोटी कोशिश वड्डी कामयाबी दी नींह हुंदी है। इस करके मेहनत ते हमेशा हमेशा भरोसा रखो, क्योंकि जदों तुसी किसे काम नूं समा दिंदे हो, मेहनत दिंदे हो, ते ओ कदे धोखा नहीं दिंदे, ते अपने सपनों नूं पंख दिओ और सपने पूरे करन वास्ते हमेशा मेहनत करदे रहो। क्योंकि औखे राह ही इंसान नूं मजबूत बनाउंदे ने। जदों तक कोशिश जारी है, राह हार कदे नहीं हुंदी। कि जिंदगी एक किताब है, हर दिन एक नवा सफा है, और उस नवे सफे नूं पढ़ के मेहनत नाल कामयाबी वल अगे वधदे रहना है। क्योंकि हौसले वाले लोग हालातां तो नहीं, हालात उन्हां नूं याद रखते ने। त्या दोस्तों, प्रोग्राम जिंदगी हसीना नूं अगे वधाउने आं ते अगला गीत प्रेम रोग फिल्म तों। इस गीत नूं गाया लता मंगेशकर ते सुरेश वाडेकर ने।

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: प्रोग्राम जिंदगी हसीन विच अगला गीत है जी फिल्म सनम बेवफा तो। इस गीत नु गाया लता मंगेशकर ते एसपी बाला सुब्रमण्यम ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमार के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
1: I am confident that this comprehensive agreement
2: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं।

0: हैं क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
3: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
1: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और

0: सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
1: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में और

0: को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
1: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar Aung San Suu Kyi Aung Lyan hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defence industrial collaboration in futuristic technology research. Malaysia joins countries banning social media use by children below 16. And orange alert for thunder squall issued for Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar Aung San Suu Kyi Aung Lyan held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
3: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
2: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project.
3: Both sides expressed an interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, in development cooperation, in health, in education, in energy. Both sides underlined the importance of connectivity for people-to-people contacts and agreed to work as quickly as possible towards the completion of the Kaladan Multimodal Transit Transport Project, as well as the Kalewa-Yaji segment of the India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway.
2: President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First, Act East and Mahasagar policies, welcoming Myanmar President Aung San Suu Kyi Aung Lyan at Rashtrapati Bhavan today. President Murmu said both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The president said.

मीडियम वेव 373.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स, आकाशवाणी अमृतसर ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र ए। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। रात दे 9:30 बज चुके ने, आओ हुण सुणदे हां पंजाबी नाटक तरकीब। भाग लैण वाले कलाकार ने हेमराज शर्मा, सुरिंदर संधू, नीलिमा अरोड़ा ते हरदीप पनेसर।

0: भाई शरदू, गल सुन।
1: जी खन्ना साहिब बोलिए।
0: भाई वर्मा नहीं आया अजे तक, कोई एप्लीकेशन आनी है ओदी? ओ तां कदे लेट नहीं होया।
1: ना ही खन्ना साहिब, हम ना ही जानत। लीजिए वर्मा साहब आ गए रहन। वर्मा साहब आप ही का इंतजार हो ही रहा था।
0: की गल वर्मा, अज लेट हो गए?
2: ओ बह तां लैंदे यार, दस देना तेनू।
0: यार वर्मा, एडी खफा होण वाली केड़ी गल है? शरदू जाके दो कप चाह दे लिया,
1: जी
0: नहीं कॉफी दे लिया, पहला वर्मा साहब का मूड ठीक करिए।
1: बहुत अच्छा साहिब।
0: हाँ दस की गल है, बड़ा मूड लटकाया है।
2: बड़ी मुश्किल च फंस गए यार।
0: पता तो लगे, उंज तो सुख सांद है ना।
2: हाँ उंज तां सुख सांद है, पर यार अपने पिंडों शरीके चो ताया लगता है।
0: की होया उन्हों?
2: वो साढ़े कोल आ गया रहन वास्ते, बड़ी प्रॉब्लम बन गई, घरवाली वक्ख औखी होण डई आ।
0: आपे चला जाऊ वापस, एडी केड़ी गल है।
2: नहीं उन्हें नहीं जाना, ओदी हुण इत्थे रहण दी सलाह है।
0: वाकई वाकई फिर ते समस्या बन गई।
2: हाँ यार कोई हल भी नहीं दिसदा, मूंह ओनू कह नहीं सकदे।
0: ये तो हुण ओनू पिंड वापस करन लई कोई ना कोई तरकीब लड़ाउणी पाऊ।
2: यार जरूर लड़ा कोई तरकीब।
0: कोई नहीं, सोच लैने हैं कोई तरकीब। लै शरदू कॉफी लैके आ गया, कॉफी पी के पहला अपने आप नू टिकाने ते कर।
1: लीजिए साहिब कॉफी।
0: कॉफी पी तू वर्मा, घबरा ना जरा भी, ये मसला हुण मेरे ते रहन दे, मैं आपे
2: ओ
0: ही।
2: चंगा भाई, हुणे मसला तू ही हल करना है।
0: हाँ कोई गल नहीं, नो प्रॉब्लम यार।
3: शुक्र है शुक्र, मेरा पुत्र पढ़ के आया है। हाँ चेता भूल गया, की ना तेरा?
4: बाबा जी मेरा कच्चा ना बबलू है।
3: बबलू? ते पक्का ना?
4: पक्का ना, नवलीन वर्मा है।
3: अच्छा, ये तो बहुत वधिया ना है।
4: बाबा जी मेरे को वधिया वधिया खिडौने भी है ने, तो विखावा तुहानू।
3: हाँ बखा दे पुत्र, खिडौने बखा दे।
4: मैं हुणी लिया अपना खिलाने वाला डब्बा।
3: लिया पुत्र,
4: आ देखो मैं अपने सारे खिलौने इस डब्बे विच रखे आ। आ वेखो जपानी गुड़िया।
3: वाह जी वाह, किन्नी सोहनी है जपानी गुड़िया।
4: बाबा जी अखा खोल दिते बंद कर दी है।
3: अच्छा,
4: लम्मे पा दो तो सो जाती है, बिठा दो तो जाग जाती है। मेरे को कार भी है, चाबी दिते बड़ी तेज दौड़ती है।
3: वे बड़ी भजदी होगी ये ता। साडे वेले तां इहो जे खिडौने नहीं सी हुंदे पुत्तर।
4: तुहाडे वेले किस तरह दे हुंदे सी खिडौने?
3: ओए पुत्तर, साडे वेले तां मिट्टी ते लकड़ दे बने हुंदे सी खिडौने।
4: ओ
3: पर ओह इन्हां खिडौणियां वर्गे नहीं सी हुंदे बेटे।
4: ओहो बाबा जी,

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स, आकाशवाणी अमृतसर ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। ते लो सुनो कवि गोष्ठी। भाग लैण वाले कवि होणगे सागर सूद, कुसुम खुशबू, रुपिंदर कौर ते मीनू सुखमन।
1: मेरे मालिक मेरे दाता,

0: दोस्तों आइए आज इस महफिल में आपके गमों को दूर करने के लिए जो कवि, जो हीरे, जो मोती पिरोकर हम लाए हैं, मैं पहले उनके नाम से आपसे मिला दूं। हमारे साथ हैं कुसुम खुशबू जी जो धारीवाल से हमारे बीच में हैं, और रुपिंदर कौर जी जो टांडा से हमारे बीच में हैं, और डॉक्टर मीनू सुखमन जो रोपड़ से हमारे बीच में हैं, और मैं स्वयं सागर सूद पटियाला से आपके लिए हाजिर हूँ। तो आपके और इन कवियों के बीच में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले कवि को निमंत्रण देने जा रहा हूँ, हमारे बीच में बहुत ही प्यारी आवाज़ की मल्लिका, कोयल जैसी आवाज़ वाली कुसुम खुशबू जी हैं जो धारीवाल से हैं। उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपनी गज़ल तरन्नुम में अगर कहें तो बहुत अच्छा रहेगा। कुसुम खुशबू जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद सागर सूद साहब। मेरी गज़ल के चंद अशार

0: बहुत अच्छे, वाह वाह।
1: एक जरा सी बात पर घबराए
0: बहुत
1: क्या।
0: बढ़िया कुसुम
1: और इस शेर पर खास तवज्जो चाहूंगी।
0: जी।
1: रो दिए जलती शमा को देख कर।
0: क्या मिश्रा है, वाह।

0: से तुम्हें मिलवाए
1: क्या
2: क्या बात है
0: इन नजारों से तुम्हें मिलवाए क्या।
1: वाह जी वाह।
0: और गजल का आखिरी शेर है
1: जी।

0: वाह
1: बहुत
0: वाह
1: धन्यवाद,
0: कुसुम, बहुत बहुत
1: बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: बढ़िया।
1: बहुत सुंदर,
0: आप
1: बहुत
0: आपने
1: बढ़िया जी।
0: इतनी खूबसूरत आवाज़ में कुसुम खुशबू के ज़रिए ये गज़ल सुनी, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इन कवियों को ज़्यादा सुना जाए। मुझे कुछ याद आ रहा है कुसुम की गज़ल सुनने के बाद कि कब कहा मैंने मुझको खुदा चाहिए, कि कब कहा मैंने
1: मैंने
0: मुझको
1: मुझको
0: खुदा
1: खुदा
0: चाहिए,
1: चाहिए,
0: बस वफाओं के बदले वफा
1: वफा वफा
0: चाहिए,
1: चाहिए।
0: क्या
1: वाह
0: और मिल
1: बात,
0: गए हो मुझे तुम सदा के लिए,
1: क्या कहने
0: इससे
1: का,
0: बढ़कर मुझे और क्या
1: क्या बात है,
0: चाहिए।
1: क्या
0: बहुत
1: बात
0: बहुत
1: है, क्या
0: शुक्रिया।
1: बात है।
0: और इनके बाद मैं जिस आवाज़ को आवाज़ देने जा रहा हूँ वो रुपिंदर कौर जी हैं, जो टांडा से हमारे बीच में हैं, LPU में हैं वो। और रुपिंदर जी अपनी रचना लेकर आपके बीच।
1: तो कविता का नाम है उम्मीद। जिंदगी में लड़ना लड़ते रहना, जिंदगी में लड़ना
0: लड़ते
1: लड़ते
0: रहना
1: रहना, चाहे थक जाओ हालातों से तुम,
0: जी,
1: क्या उम्मीद का दामन रखना थामे, चाहे थक जाओ
0: क्या
1: हालातों
0: बात
1: से
0: बहुत
1: तुम,
0: अच्छे, वाह वाह वाह
1: बहुत
0: वाह
1: बढ़िया,
0: वाह।
1: बहुत बढ़िया। चाहे घिरे हो तूफानों से, चाहे घिरे हो तूफानों
0: तूफानों
1: से
0: से
1: तुम, छोड़ जाए चाहे तुम्हारे अपने सब,
0: क्या कहें,
1: मगर फिर भी चलना चलते रहना तुम,
0: वाह वाह क्या
1: फिर भी
0: पॉजिटिविटी है,
1: चलना
0: चलते रहना
1: चलते
0: तुम।
1: रहना तुम, थामे उम्मीद का हाथ। तुम हो मनुष्य है
0: जी
1: लड़ना तुम्हारा काम,
2: क्या बात है, क्या
1: तुम
2: बात
1: हो
2: है,
1: मनुष्य है
2: है
1: लड़ना
2: लड़ना
1: तुम्हारा
2: तुम्हारा
1: काम,
2: काम,
1: जब अंधेरों से घिरी मिले राहें तुम्हें हर बार,
2: क्या बात है, क्या
1: जब
2: बात।

0: अंधेरों
1: अंधेरों से
0: से
1: घिरी
0: घिरी
1: मिले
0: मिले
1: राहें
0: राहें तुम्हें
1: तुम्हें
0: हर
1: हर
0: बार,
1: बार,
0: ना मानना तुम फिर भी उनसे हार।
1: बहुत
0: क्या
1: अच्छे,
0: कहने,
1: वाह
0: क्या
1: वाह,
0: कहने, बस फिर से थाम लेना तुम उम्मीद का हाथ।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: गिरकर फिर से संभल जाना, गिरकर फिर से
1: संभल
0: संभल जाना,
1: जाना
0: यही तो है मनुष्य का काम।
2: काम।
0: जब टूट जाओ तुम हर तरफ से, तो थाम लेना उम्मीद का हाथ।
1: वाह
2: खूब,
1: वाह
2: बहुत खूब।
1: वाह,
0: उम्मीद है वो चिड़िया, उम्मीद है वो
2: वो
0: चिड़िया
2: चिड़िया।
0: जो तूफानों में भी गाती है, टूटी हुई शाखाओं पर फिर से नए घोंसले बनाती
1: क्या बात
0: है।
1: है,
0: जिसने उम्मीद का थामा हाथ,
1: जी
0: जिसने
1: उम्मीद
0: उम्मीद
1: का
0: का थामा
1: थामा
0: हाथ,
1: हाथ।
0: उसने जीत लिए ये धरती आकाश।
2: क्या कहने, क्या कहने।
0: हार जाओ भले ही तुम 100 बार, हार जाओ भले
1: भले ही
0: ही
1: तुम
0: तुम सौ
1: 100 बार,
0: बार मगर उम्मीद का दामन ना छोड़ना मेरे
2: बहुत सुंदर,
0: यार,
1: वाह
0: ना
1: वाह
0: छोड़ना
1: वाह,
0: मेरे यार।
1: बहुत
2: बहुत
1: अच्छे,
2: खूब,
1: बहुत
2: धन्यवाद
1: अच्छे,
2: आप सबका, बहुत
1: बहुत
2: बहुत।
1: अच्छे रुपिंदर जी, बहुत बढ़िया, एक जिंदगी को जीने की कला सिखाती हुई उम्मीद रचना, और बहुत बहुत शुक्रिया इस रचना के लिए। और मुझे याद आ रहा है कि तुमको देखा यार जमाना भूल गए,
2: क्या
1: क्या
2: बात
1: बात
2: है,
1: कि तुमको देखा यार
2: यार
1: जमाना
2: जमाना
1: भूल
2: भूल गए।
1: गए, हम तो अपने दर्द सुनाना भूल गए।
0: क्या
1: क्या
0: बात
1: बात
0: है,
1: है
2: क्या
1: कि
2: बात
1: तुमको
2: है,
1: देखा यार जमाना भूल गए, हम
2: हम
1: तो
2: तो
1: अपने
2: अपने
1: दर्द
2: दर्द
1: सुनाना
2: सुनाना
1: भूल
2: भूल
1: गए,
2: गए।
1: और तेरी एक मुस्कान पे जान लुटा बैठे,
2: आहा,
1: कि
2: क्या बात
1: तेरी एक
2: है,
1: मुस्कान
2: मुस्कान
1: पे
2: पे
1: जान
2: जान
1: लुटा
2: लुटा
1: बैठे,
2: बैठे।
1: और तुम ही को यार बताना भूल
0: बहुत
1: गए।
0: बढ़िया, क्या बात
1: बहुत
2: है, क्या बात है,
1: बहुत
2: क्या
1: बहुत
2: बात
1: शुक्रिया आप
2: खूब,
1: सभी का,
2: बहुत
1: बहुत बहुत
2: खूब।
1: शुक्रिया। और चलते हैं हम अब रोपड़ की तरफ, जहाँ से डॉक्टर मीनू सुखमन जी हैं, जो नावल भी लिखती हैं, कहानियाँ भी लिखती हैं, कविताएँ भी लिखती हैं। डॉक्टर मीनू सुखमन जी से गुजारिश करता हूँ, वो अपनी रचना लेकर आएंगे।
3: बहुत बहुत शुक्रिया सागर, मैं हाजिर हूँ जिंदगी और उम्मीद लेकर।
1: हाँ, आप भी उम्मीद लेकर
3: स्वागत
1: आए
2: है
1: हैं,
2: जी,
1: बार-बार स्वागत।
3: बिल्कुल। एक नया जख्म मिला, एक नई बात हुई।
1: जी,
2: क्या बात है,
3: एक नया जख्म
2: जख्म
3: मिला,
1: मिला, एक नई
3: एक
1: बात
3: नई बात
1: बात हुई,
2: हुई, जिंदगी से आज फिर एक मुलाकात।
0: क्या बात है,
1: वाह
0: क्या
1: वाह वाह
0: बात है,
1: वाह वाह
0: बहुत
1: वाह,
3: खूब। शुक्रिया। वक्त के पास तो हर मर्ज का मरहम होगा,
1: जी
3: वक्त के पास
2: पास तो
3: तो
1: हर
3: हर
1: बात का
3: मर्ज का मरहम
2: मरहम
3: होगा।
2: होगा।
3: लोग कहते हैं मगर सदियों की बात हुई।
2: क्या बात है, क्या बात है, बहुत
3: जल
2: खूब।
3: गए परवाने तो चिरागों का गिला क्या करना, जल
2: वाह,
3: गए परवाने
1: तो
3: तो चिरागों
2: चिरागों
3: का
2: का
3: गिला
1: गिला
3: क्या
1: क्या करना।
3: करना, हाथ से रस्म है दुनिया के नई क्या बात हुई।
2: क्या
1: वाह
2: कहने, क्या
1: वाह
2: कहने,
1: वाह, सुखमन बहुत अच्छे।
3: मुस्कुराते हुए मिलना, शुक्रिया सागर, मुस्कुराते हुए मिलना सभी से इरादतन।
2: क्या कहने,
3: मुस्कुराते हुए मिलना सभी से इरादतन, यह हुनर सीख लिया हमने तो क्या बात हुई।
2: क्या बात है, क्या बात है,
3: कांच के घर में रहे पत्थरों से दोस्ती की,
1: वाह वाह वाह वाह,
3: कांच के
1: कांच के
3: घर
1: घर
3: में
1: में
2: बहुत
1: रहे
2: खूब,
1: पत्थरों
2: बहुत
1: से
2: पत्थरों से
1: दोस्ती,
2: दोस्ती
1: दोस्ती।
2: की,
1: हाँ,
3: फिर भी कहते हैं मोहब्बत में नायाब बात हुई।
1: क्या
3: क्या बात,
1: बात
2: बहुत
1: है,
2: बढ़िया,
1: वाह
2: बहुत
1: वाह वाह
2: बढ़िया,
1: वाह,
2: बहुत बढ़िया।
3: कुछ मुसाफिर जो मिले राह में हम राह बने,
1: जी
3: वाह, कुछ मुसाफिर जो मिले राह में
1: हम रहा
3: हम
1: बने।
3: राह बने, मंजिलें दूर थी मगर अच्छी मुलाकात।
2: क्या
1: हाँ
2: बात
1: हाँ
2: है,
1: हाँ
2: क्या
1: वाह वाह
2: बात है,
1: वाह,
2: बहुत बढ़िया।
3: उम्र भर लिखते रहे दबी दबी सारी बातें,
1: जी
2: उम्र
1: क्या
3: भर
1: कहने,
3: लिखते
1: दबी दबी
3: रहे
1: सारी बातें,
3: दबी दबी
2: दबी
3: सारी
2: दबी बातें।
3: बातें, आज रोए सुखमन तो कहते हैं बरसात हुई।
2: क्या
1: वाह
2: बात है,
1: वाह
3: शुक्रिया,
1: वाह
2: क्या
1: वाह वाह
2: बात
1: वाह,
2: खूब, क्या
1: वाह
2: बात
1: वाह,
2: खूब,
1: बहुत
2: बहुत
1: अच्छे
2: खूब,
1: सुखमन जी।
2: बहुत खूब सुखमन जी। और अब मैं जो अब तक सभी को आवाज़ दे रहे थे, अब मैं उनको आवाज़ दे रही हूँ। आदरणीय सागर सूद साहब जो कि पटियाला से हैं, उनकी अभी तक गज़लों की 80 किताबें शाया हो चुकी हैं। तो आइए सागर जी, और अपनी खूबसूरत रचनाओं से इन फिज़ाओं को महका दीजिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया कुसुम, बहुत बहुत शुक्रिया। गज़ल का मतलब देखिएगा
2: स्वागत है जी।
1: कि खो गया बचपन जवानी खो गई,
2: क्या कहें,
1: कि खो गया बचपन जवानी
2: जवानी
1: खो
2: खो
1: गई,
2: गई,
1: खूबसूरत सी निशानी खो गई।
2: बहुत
0: क्या
2: बढ़िया,
0: बात,
2: बहुत
1: है कि खो
2: बढ़िया,
1: गया बचपन जवानी
2: जवानी
1: खो
2: खो
1: गई,
2: गई,
1: खूबसूरत
2: खूबसूरत
1: सी निशानी
2: निशानी
1: खो
2: खो
1: गई,
2: गई,
1: और कह कहूं कि महफिलें ढूंढे कहाँ,
2: आहा, क्या कहने,
1: कि कह कहूं कि महफिलें ढूंढे कहाँ, बात थी वो तो पुरानी
2: बहुत
1: खो
2: बढ़िया, बहुत
1: गई।
2: बढ़िया,
1: बहुत
2: बहुत
1: बहुत
2: बढ़िया बात है,
1: शुक्रिया। कि
2: क्या
1: बात
2: कहने,
1: थी वो तो पुरानी खो
2: खो
1: गई,
2: गई।
1: और आसमानी वो परी गुम चांद है, कि आसमानी वो परी गुम चांद
2: चांद
1: है,
2: है,
1: खो गई है आज नानी खो गई।
2: क्या
1: कि
2: बात है,
1: खो
2: बहुत
1: गई
2: खूब,
1: है,
2: बहुत खूब,
1: शुक्रिया, कि
2: बहुत
1: खो गई
2: खूब,
1: है आज
2: नानी
1: नानी खो
2: खो गई।
1: गई, और खेल बस ये रह गया है जिस्म का, कि खेल बस ये रह गया है।

0: जिस्म का आत्मा की अब कहानी खो
1: खो
0: गई
1: क्या
0: है।
1: बात क्या बात क्या बात
0: बहुत
1: क्या
0: बहुत
1: बात
0: शुक्रिया
1: क्या
0: कि आत्मा की अब कहानी
1: कहानी
0: खो
1: खो
0: गई
1: गई।
0: और जब मिली बारूद की हरसू फजा कि जब मिली
2: मिली बारूद
0: बारूद की हरसू फजा
2: फजा
0: बाग कोयल रात रानी खो
1: क्या
0: गई।
1: बात क्या बात
0: के
1: बहुत
0: बाद
1: बढ़िया
0: बाग कोयल रात रानी खो गई। और मक्ता देखिएगा कि आज सागर हो रहा है क्या मुझे,
2: क्या कहने
0: के आज सागर हो रहा है क्या मुझे, सोच पकड़ी तो रवानी खो गई।
2: बढ़िया
0: सोच पकड़ी तो रवानी खो गई। खो गया बचपन जवानी खो गई, खूबसूरत सी निशानी खो गई। और एक छोटी सी गजल का मतलब कुछ यूं भी,
2: स्वागत है
0: कि कब मंदिर कब मस्जिद मिलता कब मिलता मैं खाने में,
1: क्या बात
0: कि कब मंदिर कब मस्जिद मिलता कब मिलता मैं खाने में, जीवन को आराम मिलेगा जीते जी मर जाने में।
2: क्या बात है,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। कि कब मंदिर कब मस्जिद मिलता कब मिलता मैं खाने में, जीवन को आराम मिलेगा जीते जी मर जाने में। और लाख कहूँ मैं भूल गया हूँ लेकिन सच ये बात नहीं, कि लाख कहूँ मैं भूल गया हूँ लेकिन सच ये बात नहीं, वक्त लगेगा मुझको यारो उसकी याद भुलाने में। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त लगेगा मुझको यारो उसकी याद भुलाने में। और भोर हुई तो फिर से निकला आवारा बादल बनकर, कि भोर हुई तो फिर से निकला आवारा बादल बनकर, सारी रात बिता दी हमने जिस दिल को समझाने
2: क्या,
0: में
2: क्या, क्या,
1: क्या
2: बात
1: क्या
2: बात
1: है।
0: सारी बहुत बहुत शुक्रिया कि सारी रात बिता दी हमने जिस दिल को समझाने में। और खुशियों का एहसास ना होगा गर कोई तकलीफ ना हो,
2: क्या बात है,
0: कि खुशियों का एहसास ना होगा गर कोई तकलीफ ना हो, कांटों का भी हाथ रहा है फूलों को महकाने में। बहुत बहुत कि कांटों का भी हाथ रहा है फूलों को महकाने में। और हम इतने नादान नहीं हैं, कैसी बातें करते हो,
2: क्या मिसरा है,
0: कि हम शुक्रिया कि हम इतने नादान नहीं हैं, कैसी बातें करते हो, मत समझाओ सागर तुम क्यों आए हो मैखाने में, कि मत समझाओ सागर तुम क्यों आए हो मैखाने में, कब मंदिर कब मस्जिद मिलता कब मिलता मैखाने में, जीवन को आराम मिलेगा जीते जी मर जाने में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और मैं फिर से चाहता हूं कि समय हमारे पास है तो उसका फायदा उठाया जाए। उसका फायदा उठाते हुए मैं फिर से एक दौर में कुछ रचनाएं चाहता हूं कि आपके सामने रूबरू हों। और सबसे पहले फिर से आवाज देने जा रहा हूं मैं, जिसे कहता हूं कि कोयल सी आवाज जैसी, मलिका कुसुम खुशबू।
2: जी जी बहुत शुक्रिया सागर साहब। मेरी गजल के छंद अशआर हैं, तुम्हारी इंक सारी जा रही है।
0: अच्छा हाँ,
2: तुम्हारी इंक सारी जा रही है, हमारी राजदारी जा रही है, हमारी राजदारी जा रही है। और कहो मत रायगा इस जिंदगी को, कहो मत रायगा इस जिंदगी को, इबादत में गुजारी जा रही है। कहो मत रायगा इस जिंदगी को, इबादत में गुजारी जा रही है। और शेर देखिएगा कि तुम्हारी राह यूं ही तकते तकते, तुम्हारी राह यूं ही तकते तकते, हमारी उम्र सारी जा रही है। तुम्हारी राह यूं ही तकते तकते, हमारी उम्र सारी जा रही है। और शेर है कि मेरी कश्ती बचा ले ऐ समुंदर, मेरी कश्ती बचा ले ऐ समुंदर, तेरी मौजों से हारी जा रही है। मेरी कश्ती बचा ले ऐ समुंदर, तेरी मौजों से हारी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और शेर देखिएगा कि हमारी आंख का काजल चुराकर, हमारी आंख का काजल चुराकर, नजर किसकी उतारी जा रही है।
1: क्या बात है,
2: हमारी आंख का काजल,
0: हमारी आंख का काजल चुराकर
2: नजर किसकी उतारी जा रही है।
0: बहुत
2: बहुत धन्यवाद। और आखिरी शेर है कि तुम्हारी याद के जुगनू पकड़कर, तुम्हारी याद के जुगनू पकड़कर, शबे फुरकत गुजारी जा रही है। तुम्हारी याद के जुगनू पकड़कर, शबे फुरकत गुजारी जा रही है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कुसुम जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए दोस्तों चलते हैं हम फिर से टांडा की ओर, जहां से हमारे बीच में रुपिंदर कौर जी हैं। रुपिंदर जी से गुजारिश करूंगा एक रचना, पहले उम्मीद की थी अब फिर उम्मीद की लेकर आएंगे मुझे लगता है।
1: शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत। अगली जो कविता मैं पेश कर रही हूँ वो है प्रेम पर
0: जी।
1: प्रेम सुख देता है
0: हाँ।

0: इस कविता का नाम है
1: जी
0: सुना है प्रेम सुख देता है,
1: जी
0: जीवन को खुशियों से भर देता है।
2: क्या
1: वाह
2: बात है,
1: वाह
2: क्या
1: वाह
2: बात है।
1: वाह,
0: सुना है प्रेम सुख
1: सुख
0: देता
1: देता है,
0: है, जीवन को खुशियों से भर देता है।
2: बहुत सुंदर।
0: मगर मैंने तो प्रेम में विरह को देखा है।
2: क्या खूब है।
0: मैंने तो प्रेम में विरह को देखा
2: है,
0: जहां दो दिल मिलकर भी जुदा हो जाते हैं।
2: क्या कहने,
0: प्रेम होते हुए भी एक दूसरे से टूट जाते हैं। सुना है प्रेम सुख देता है, जीवन को खुशियों से भर देता है। प्रेम में मिली पीड़ा बार बार हर बार, प्रेम में मिली पीड़ा बार बार हर बार, ना गया फिर भी उसका ख्याल।
2: क्या कहने,
0: ना खुश हूँ ना हूँ उदास
1: जी,
0: ना खुश हूँ ना हूँ उदास, समझ नहीं पाया मैं अपना ये हाल।
2: क्या कहने, क्या कहने।
0: कभी तो दूर वो होता है, भूल जाता हूँ मैं सब ख्वाब, तो कभी पास होकर भी दूर सा लगता है मुझे वो अपना खास।
2: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: सुना है प्रेम में बहुत सुख मिलता है, प्रेम खुशियों से भर देता है।
1: जी।
0: जब कभी रात के अंधेरे में चांदनी उतर आती है आंगन में, आती है तुम्हारी याद फिर से एक बार।
2: बहुत बढ़िया, बहुत।
0: मानो जगमगा उठा हो मेरा संसार, प्रेम में पीड़ा तो मिली बार बार, न जाने फिर क्यों सुना मैंने प्रेम में बहुत सुख मिलता है।
1: क्या बात है,
2: बहुत
0: धन्यवाद, बहुत बहुत।
1: वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई सही बात है कि प्रेम में सुख मिलता है, क्योंकि प्रेम में अगर दुख भी मिलता है तो प्रेम की वजह से मिलता है, तो प्रेम में तो सुख रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो भी किसी अपने का दिया हुआ होता है। बहुत अच्छी रचना रुपिंदर जी। और चलिए दोस्तों, फिर से चलते हैं रोपड़ की ओर, और डॉक्टर मीनू सुखमन रचना के साथ।
3: मैं हाजिर हूँ अपनी रचना, थोड़ा ठहर कर देखें। दौड़ती भागती दुनिया में जरा ठहर कर देखें, एक अरसे से मिले नहीं आज खुद से मिलकर देखें।
1: क्या बात है, खुद से मिलकर देखें। बहुत अच्छे सुखमन, बहुत अच्छे।
3: दूसरों की ख्वाहिशों का हिसाब तो रोज रखते हैं।
2: क्या कहने,
3: दूसरों की ख्वाहिशों का हिसाब तो रोज रखते हैं, हमारी आंखों में क्या टूट गया जरा आंखें भर कर देखें।
2: बहुत बढ़िया,
3: बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की आंच पर पकते रहे ता उम्र हम, वक्त की आंच पर पकते रहे ता उम्र हम, जो कच्चे रह गए जज्बात उन्हें आज मुकम्मल कर देखें।
2: बहुत सुंदर।
3: मशवरों तो दुनिया भर को मुफ्त में दिए हमने,
2: क्या
3: मशवरे तो दुनिया भर को मुफ्त में दिए हमने, अपने दिल की उलझन पर भी थोड़ा गौर कर देखें।
2: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
3: मंजिलों की धुन में पांव के छाले नहीं गिने, मंजिलों की धुन में पांव के छाले नहीं गिने, आज सुकून मिले उस राह पर भी मुड़ कर
1: देखें। क्या बात है,
3: शुक्रिया। कश्ती को तो तूफानों से बचा लाए हर दफा, कश्ती को तो तूफानों से बचा लाए हर दफा, जो साहिल पर ही डूब गया उस यकीन का मंजर।
1: क्या बात है,
3: जो साहिल पर ही डूब गया उस यकीन का मंजर देखें। उम्र गुजर गई सुखमन, ग्यारों की महफिलें सजाते।
1: क्या बात है,
3: उम्र गुजर गई सुखमन, ग्यारों की महफिलें सजाते हुए, तन्हाई में अपनी खामोशी को आज गुनगुना कर
2: देखें।
3: तन्हाई में अपनी खामोशी को आज गुनगुना कर देखें।
2: बहुत
3: बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बढ़िया,
2: बहुत खूबसूरत रचना सुखमन जी। और अब मैं फिर से निमंत्रण देने जा रही हूँ सागर सूद जी को, कि वो इस खुशनुमा शायरी के माहौल को अपनी रचनाओं से, अपने खूबसूरत अंदाज से और भी प्यारा बना दें। आइए सागर जी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया जी। कुछ याद आ रहा है कि तू जो मुझसे जुदा नहीं होता, कि तू जो मुझसे जुदा नहीं होता, पास मेरे भी क्या नहीं होता।
2: क्या बात है।
1: तू जो मुझसे जुदा नहीं होता, पास मेरे भी क्या नहीं होता, और एक शिकवा रहेगा बस तुझसे, काश तू बेवफा नहीं होता। एक शिकवा रहेगा बस तुझसे, काश तू बेवफा नहीं होता। एक रचना आज कविता पेश कर रहा हूँ,
2: स्वागत है जी,
1: जो पापा की याद में लिखी। के पापा, आज फिर आपकी अलमारी खोली मैंने, आपकी शर्ट से अब भी वही हल्की सी खुशबू आती है।

0: पसीने और इत्र में घुली, मेहनत की महक। पर पापा, अब आपकी आवाज सिर्फ यादों में आती है। घर में सब कुछ है, बस आप नहीं हैं। आपके बिना घर घर नहीं लगता, सिर्फ एक मकान लगता है।
1: सच है।
0: जिसमें सन्नाटा किराए पर रहता है। मैं अचानक बड़ा हो गया। जिम्मेदारियां उम्र नहीं देखती, वो बस कंधे ढूंढती हैं।
1: क्या कहने,
0: और अब ये कंधे आपकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं।
1: सच।
0: पर आज दिल से एक ही आवाज निकलती है, पापा आप जहां भी हो कृपया खुश रहना। आपके बिना सब कुछ है पर सुकून नहीं है। सब
1: बहुत
0: कुछ है
1: सुंदर, बहुत भावपूर्ण,
2: बहुत
1: भावपूर्ण,
3: बहुत सुंदर कविता।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चाहता हूँ कि कुसुम खुशबू ही महफिल को अंत की तरफ लेकर जाए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सागर जी। मैं एक गजल तरन्नुम में सुनाने जा रही हूँ। हम

0: बहुत शुक्रिया जी। और शेर देखिएगा, मेरी यादें सहेज कर रख लो।
1: क्या बात है।

0: और एक गजल के चंद अशार
1: तरन्नुम में, कुसुम जी
0: तरन्नुम में।
1: जी।
0: कभी तारीकियों में जिंदगी ठोकर ना खाएगी।
1: वाह वाह वाह वाह,

0: जख्म और मरहम का जवाब नहीं।
1: कभी ये जख्म देगी और कभी मरहम लगाएगी।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया कुसुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, कुसुम जी की इस शानदार आवाज़, मैंने पहले कहा था कि कोयल जैसी आवाज़ है, कुसुम जी बहुत बहुत शुक्रिया कि अब इस महफिल के अंत में मुझे याद आ रहा है कि उसकी गलियों में जाना छोड़ दिया, अपने दिल को दुखाना छोड़ दिया।
2: क्या बात है
0: कि उसकी गलियों में जाना छोड़ दिया, अपने दिल को दुखाना छोड़ दिया, वो भी मेरा नहीं हुआ सागर जिसकी खातिर जमाना छोड़ दिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आप हमारे रहेंगे और इस कार्यक्रम को सुनेंगे और हमें बताएंगे कि कैसा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और मैं विशेष तौर पर फिर से कुसुम खुशबू जी का, रुपिंदर कौर जी का, डॉक्टर मीनू सुखमन जी का, और अपना भी कर देता हूँ सागर सूद पटियाला से, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे जल्दी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
3: हुणे तुसी कवि गोष्ठी सुन रहे सी, भाग लैण वाले कवि सन सागर सूद, कुसुम खुशबू, रुपिंदर कौर ते मीनू सुखमन। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, FM बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स, आकाशवाणी अमृतसर ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। रात दे 10:30 बज चुके ने, लोहन चंद गजलां समात फरमाओ। सब तो पहला रूप कुमार राठौर ते सोनाली राठौर दी आवाज च एक गजल।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitrakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुँच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर.एन. नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज़ शेयर्ड बाय अपराजिता नायर।

0: सतेंद्र सतादीवा च सुन सी ये गीत ते प्रोग्राम चल रहा सौगात निगाह स्वागत करते हाँ ग्रा पिंड फ्रांसी हिसार तो राजकुमार दूधी प्रमोद कुमार दूधी पुष्पेंद्र कुमार दूधी भी जुड़े ने ते सतीश अनेजा दी चंडीगढ़ तो बिमला अनेजा शैफ अली शैफी दे मास्टर डेविस जुड़े हुए ने जी तुहाड़ी फरमाइश जरूर मैं एक फोन कॉल दी फरमाइश तो बाद पूरी कर रहे हैं जी शुक्रिया बहुत बहुत प्रोग्राम दे विच शामिल होने लई कनेरा मोहला पटियाला तो भी मुकेश बत्ता जी नीलम बत्ता जी नितिन पलक करण गीतू निहारिका हार्दिक ते वंश बत्ता जुड़ गए ने ते फोन लाइन दे जरिए थोड़े स्वागत करते हैं जी स्रोते दा स्वागत जी बहुत बहुत तुहाडा
1: ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ
0: ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ
1: ਠੀਕ ਠਾਕ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ
0: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਈਏ ਜੀ ਚਾਹ ਅੰਗਦ ਅਲੀਵਾਲ ਦਾ ਲਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੋ ਜੀ ਤੇ

0: लगा काफ़ी देर
1: बिल्कुल
0: बाद तुहाडे नाल गल करके। ए जी छाजली तो सुखबीर सिंह जी जुड़े हुए ने हर वार की तरह अज फोन लाइन के जरिए शामिल हुए, स्वागत करता हाँ मैं इन्हों का।

0: जी, बिल्कुल। ते दसो फिर केड़ा गीत सुनाइए तुहानू?
1: सुखविंदर सिंह का गाना जी, अंबिया नूतर सिंह जी,
0: अंबिया
1: मतलब
0: नूतर
1: बहुत
0: सिंह
1: मेहरबानी
0: जी।
1: शुक्रिया।
0: ठीक है जी, ठीक है जी। सुखविंदर की आवाज़ से सुनते हैं फिर ही तुहाडी फरमाइश के गीत।
1: हाँ जी,
0: शुक्रिया जी।
1: ओके जी, बाय।
0: जी अंबिया नू तरसेंगी ते दी, चल रहा है मौसम बहार, ए है जी अंबा दी ते तुर पई है गल अंबिया दी, ते करांगे जी इस बारे कुछ गल होर भी। ते सुनदे हां पहला इन्हां दी फरमाइश जो साडे तक आई सुखविंदर सिंह दी आवाज़ दे विच, अंबिया नू तरसेंगी। इस तो पहला कि मैं इस गाने दे बोल शुरू होण, क्योंकि सुखविंदर सिंह पंजाब दी इस धरती तो जन्मिया होया, वो ऐसा गीतकार है जिन्हें कि पूरे विश्व दे विच इस पंजाबी अंदाज़ नू जड़ा है ना, मैं ये अक्खर वरत रहा हाँ, इस अंदाज़ नू जड़ा है पूरे विश्व दे विच पहुँचाया है। क्योंकि पंजाब दी गल करन वाले बहुत ने, पर पंजाबी गायकी दा एक खास अंग हुंदा है जिहड़ा कि प्लेबैक सिंगिंग दे विच

0: ambientar sin gi chadi ke desto aba sukhvinder singh di awaz sun si ji geet agle phone call jode ne sade nal karde han na gal swagat ji bahut bahut wada
1: sasrikal sir main santosh kumar aur main कोझिकोड केरल से मैं संतोष कुमार यादव बोल रहा हूँ सर
0: जी संतोष जी बहुत बहुत स्वागत तुहाडा प्रोग्राम दे विच
1: बहुत बहुत स्वागत सर और मेरा फोन अटेंड कर लिया फोन अटेंड करते हैं सर मैं एक ही बोल रहा हूँ सर
0: जी
1: मीठी बोली बोल के और न सताओ अपना दिल बहलाने के लिए संतोष बेचारा के दिल के तीर मत चलाओ
0: जी जी जी जी बिल्कुल जी ऐसी कोशिश
1: कर और मैं एक चीज में बोल रहा आपका स्वभाव इतना अच्छा है दिल ने जिसका नाम लिया मैंने उसका दामन थाम लिया और जब जब दिल पे दर्द हुआ तो मैं सिर्फ आपका नाम लिया
0: वाह जी वाह शुक्रिया जी आकाशवाणी के माध्यम से देखो जी आपके साथ बात हो रही है आपका दिल बहला रहे हैं हम किसी भी तरह से तो उसकी
1: सर आपका स्वभाव इतना अच्छा है ना सर इतना स्वभाव अच्छा है और मैं क्या बोलूं सर मैं अपने बारे में बराबर नहीं करता आप बिल्कुल अच्छा

0: मैं जो भी हूँ और सभी जितना भी सुनता होगा आप प्रोग्राम में, मैं 1991 से मैं जुड़ा हुआ हूँ, सभी को मालूम होगा।
1: जी जी जी
0: मैं अपने बारे में, मैं उसको मालूम पड़ जाएगा, मैं थोड़ा डिटेल में बोल देता हूँ। मलसिया साकोट में मैं रहता था 1991 में मैं, और भी मैं केरल में जॉब करता हूँ सर। ये चीज का आप सर बिल्कुल अच्छा आदमी है, और आपका मैं ये चीज बोलता, आपका स्वभाव बिल्कुल मस्त है, और कोई भी है ना सर, मैं ये चीज मैं बोलता हूँ,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: मैं ये चीज मैं बोलता हूँ, मैं बिहारी हूँ, और तो कोई भी एंकर है ना, मेरे पास में रिकॉर्ड है सर, मैं जो भी कोई बात करता हूँ मेरा टेलीविजन पे रिकॉर्डिंग होता है, मेरा टेलीविजन मेरा स्मार्ट है उसमें भी रिकॉर्डिंग होता है। और ये चीज का होता है किसी को बिहारी बोलते, बिहारी है इधर से कॉल
1: हाँ जी,
0: करता,
1: नहीं आपने
0: मैं वो
1: आपने
0: रिकॉर्डिंग में
1: आपने
0: वायरल
1: हाँ
0: कर
1: जी
0: दूं तो मैं
1: जी
0: वो
1: संतोष
0: जाके
1: जी,
0: प्रॉब्लम
1: आप जी ने
0: आएगा।
1: आपने
0: आप
1: हाँ
0: अच्छा आदमी है तो
1: हाँ
0: ये
1: आपने
0: सर
1: आपने
0: मैं
1: बात
0: क्या
1: बताई
0: बताऊं,
1: थी पिछली बार
0: सच्ची
1: भी,
0: दिल से आपका
1: हाँ
0: सलूट है सर।
1: जी जी चलो गीत बताइए। अच्छा जी चलो, पिछली बातें अब हम भूलते हैं, अब गीत बताइए
0: सर
1: कौन सा सुनेंगे।
0: मैं आपको क्या बोले, मैं इतना खुशी, मैं खुश में तो मैं पूरा रहता हूँ सर। आप है ना अपना मनपसंद का कोई भी सुना दीजिए सर।
1: नहीं फिर भी आप मेरे, आज तो गाने की टाइम की शुरुआत भी जी हुई थी गुरदास मान से, सो गुरदास मान मेरे सामने आर्टिस्ट पड़े हैं, बता दें उनका कोई गीत सुनना है आपने तो।
0: थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए,
1: जी
0: दुख हो गए दसना जरूर चाहिए
1: जी जी ठीक है जी, आपको यही गाना सुना देते हैं हम जी।
0: सर। कभी भी
1: शुक्रिया
0: ना सर, सच्चाई पे इंसान को चलना चाहिए सर, झूठ
1: जी,
0: पे नहीं
1: हाँ
0: चलना चाहिए।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल जी, शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल हुए जी आप, लो जी
0: थैंक
1: आपकी
0: यू सर, आप
1: फरमाइश पे
0: सबका
1: अगला।
0: दुआ रहना चाहिए, मैं बिंदास में रहता हूँ
1: जी
0: सर।
1: जी शुक्रिया जी संतोष जी, बिल्कुल जुड़े हुए इसी प्रोग्राम दे विच, ते हर बार दी तरह उन्होंने अपनी गल पूरी करनी होंगी है जी, तो मैं भी उन्होंने मौका दे दिना उन्होंने, शुक्रिया इन्हों का, लो सुन देना दी फरमाइश टैग लगे।

0: हाँ जी, थोड़ा थोड़ा हंसना ज़रूर चाहिए, बिल्कुल जी, थोड़ा थोड़ा। और कुदरती साढ़े इंसानों के विच दी इमोशनज मिले ने, हासे दे, गुस्से दे, रुसण दे, मनाउण दे, ये सारे का मज़ा लै लेना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि जिंदगी नूं जीण दे लई कोई ना कोई ऐसे मोड़, फिर जदों हासे वाले, कुछ दुख कुछ तकलीफ वाले भी, ते कुछ यादा, ये सब कारण बनते। नहीं तो यादा कहिंदे ने ना कि याद जिहड़ी आ वो अपने आप नहीं याद रहिंदी, उहदे नाल कुछ होर भी जुड़िया हुंदा, कुछ जिहदे करके वो याद जिहड़ी है सानू बार बार याद आती है। तो जी बिल्कुल, हंसे होवांगे किसी पल किसी समय के उत्ते, तो सानू समा याद आएगा, वो लोग वो इंसान याद आएंगे, वो जड़े जिन्हां दे नाल असी बैठ के हंसे खेडे होवांगे। गुरदास मान की आवाज़ सुन रहे जी गीत, तो साढ़े को अगले फोन कॉलर भी जुड़ गए हैं। स्वागत जी बहुत बहुत थोड़ा।
1: हेलो, सत श्री अकाल हरप्रीत जी।
0: सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत स्वागत थोड़ा
1: श्री गुरु रविदास नगर मलोट तो फकीर चंद रसनिया जी, थोड़ा
0: जी। फकीर चंद जी, बहुत बहुत स्वागत थोड़ा प्रोग्राम दे विच,
1: ही बहुत बहुत थैंक यू। मैं
0: ते
1: तो
0: दसो।
1: हरप्रीत जी, अज इदा लगता जमें अज शुक्रवार हो।
0: वाह जी वाह, शुक्रवार, बस फिर देख लो फिर अगे अगे ताड़ी, फिर हुण तुसी गलती ना कि छुट्टी ना मान लियो अगे शनि ऐतवार दी है ना, फिर
1: कोई कोई ड्यूटी तो बदलिया रही है जी।
0: हाँ जी हाँ जी, ते दसो केड़ा गाना सुनाइए अज फिर।
1: जी तो फिर अजी कुलजी मंग साहब का सुना दो,
0: हाँ जी
1: तेरे दिल्ली तो सूरत दी है हिरदी।
0: जी, लो जी, तेरे टिले तो सूरत दी है, लो जी, सुन दिया कुलदीप माणक की आवाज़ फिर ताड़ी फरमाइश ते गीत।
1: ठीक,
0: शुक्रिया बहुत बहुत थोड़ा, फकीर चंद जी की फरमाइश ते कुलदीप माणक की आवाज़ सुन रहे हैं जी ये गीत।

दाना पानी खिंच के लेंदा मोहम्मद रफी दी आवाज़ 'च सुनिया जी ये गीत। ते साढ़े अगले फोन कॉलर जुड़े ने करदे उन्हां नाल भी गल। स्वागत जी तुहाडा बहुत बहुत जी। तुहाडी फोन लाइन मिल गई है जी। हैलो, हाँ जी तुहाडी आवाज़ आ रही है जी, दसो जी। लग रहा जी कोई फिर टेक्निकल इशू है जी, जिहदे करके इन्हां दी आवाज़ जिहड़ी नहीं पहुँच पा रही। जी एक बार फिर कोशिश कर लिए, तुहानू मेरी आवाज़ जे पहुँच रही होवे। नहीं जी, शायद इन्हां दी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही किसी टेक्निकी खराबी के कारण। तो सुनदे हां जी प्रोग्राम का अगला गीत। तुसीं इस तरह ही प्रोग्राम सौगात दे विच जुड़े रहना जी, क्योंकि तकरीबन 15 मिंट का साथ हजे तुहाडा ते साडा जुड़िया होया है जी। तो लो जी महेंद्र कपूर ते दिलराज कौर की आवाज़ 'च सुनदे हां गीत।

ना पकड़ तुम्हें अंगियार तेरी मेरी हम मेरी तेरी हम तेरी मेरी मेरी तेरी मेरी तेरी तेरी मेरी अख लड़ जाए हो।

0: प्रोग्राम चल रहा जी स्वागत ते मैं हरप्रीत एक बार फिर तो थोड़ा स्वागत करदा जी प्रोग्राम की समाप्ति च रह गई समा 10 मिनट का ही तो साढ़े अगले फोन कॉलर जुड़े ने साढ़े नाल करदे उन्होंने गल स्वागत जी थोड़ा बहुत बहुत
1: नमस्कार जी
0: कौन गल कर रहे हो

0: प्रोग्राम चल रहा है जी स्वागत ते साढ़े आखिरी फोन कॉलर जुड़ गए ने सो मैं सोचा जी क्योंकि रह गए ने 4 मिनट समा ते जरूर उन्होंने कॉल नू ले लिया जाए। स्वागत जी बहुत बहुत थोड़ा।
1: हेलो हरप्रीत सिंह जी साहब जी
0: सत श्री अकाल जी धर्मा सागर जी स्वागत थोड़ा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी तुहाडा वी।
0: जी जी जी शुक्रिया।
1: एक जी फोन ना सर जी समन कल्याणपुर दी बात से
0: जी संसार तो तेरी बड़े सोहने पंजाबी गीत

नानक एकी बाहरी होर दूजी नाही जाए, सो करे जितसे रजाए। वड्डे विस्तार वाले परिपूरक परमात्मा दा कल्याणकारी नाम भी वड्डा है, इतना वड्डा है कि जिसनू बयान नहीं कीता जा सकता। केवल ते केवल उसदे नाम नू जप के, उसदे गुण गायन करके नाम रूपी रंगत हासिल कीती जा सकती है ते सदीवी खेड़े दी अवस्था विच विचरिया जा सकता है। राग पैरों विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी दी स्थापना है। सब ते ऊंचा जाका नाओ, सदा सदा ताके गुण गाओ। सरवण करदे आं भाई अमरीक सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वलों गायन कीता होया।

सबते ऊंचा जाका नाओ, सदा सदा ताके गुण गाओ। इस शब्द का गायन किया सी भाई अमरीक सिंह ते उनादे रागी जत्थे ने। तुम मेरी सोभा, तुम संग रचिया, तुम मेरी ओट, तू है मेरा तकिया। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी उस बेअंत शोभा दे स्वामी अकाल पुरख प्रभु दे प्रेम रंग विच रते हुए महसूस करते हुए फरमाउंदे ने कि हे अकाल पुरख परमेश्वर, मैनू तेरा ही आसरा है। अकाल पुरख परमात्मा दी शोभा नित नवी है। ओ नता प्रति बेअंत बख्शिशां करके कुदरत नू नवाजदा है, जिस दा अंत अर्शी देवते भी पौण तो असमर्थ रहे, बस उस तो ता बलिहारे ही जाया जा सकता है। राग कल्याण विच गुर फरमान है, मेरे लालन की सोभा सद नवतन।

0: मेरे लालन की सोबा, सद नवतन मन रंगी सोबा। इस शब्द का गायन किया सी भाई बलबीर सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी सुखवंत सिंह।
1: कल्याण महला पंजवा, मेरे लालन की सोभा, सद नव तन मन रंगी सोभा रहाओ। ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा, भगत दान जस मंगी, योग ज्ञान ध्यान सेख नागै, सगल जपहें तरंगी। कहो नानक संतन बलहारै, जो प्रभ के सद संगी। विचार अधीन इह पावन पवित्र शब्द, शहीदां दे सिरताज, बाणी दे बोहित, पंचम पातशाह गुरुदेव साहिब श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी का उचारण किया होया है। ये पावन शब्द साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 1322 अंग ते कल्याण राग दे अंदर सुभायमान है। कल्याण महला पंजवा दे सिरलेख हेठ दर्ज इस शब्द दे अंदर पंचम पातशाह गुरुदेव जी ने उस महान अकाल पुरख वाहिगुरु दी सोभा दा वर्णन कीता है, जिस वर्गा दूसरा कोई नहीं है। सतगुरु जी ने शब्द दे आरंभ विच वचन कीते हन, मेरे लालन की सोभा, साध नाव तन मन रंगी सोभा रहाओ। शब्द दियां इह आरंभक पंक्तियां जो कि शब्द दियां रहाओ दियां पंक्तियां हन, भाव कि यह शब्द दा केंद्री भाव ते सारी विचार दा तुरा हन। इन्हां विच सच्चे पातशाह हजूर ने सोहणे प्यारे प्रभु दी सच्ची सोभा ते वडियाई कीती है कि मेरे अकाल पुरख वाहिगुरु दी सोभा, उस दी वडियाई, उस दी उपमा सदा ही नव तन भाव हमेशा नवी रहिंदी है। उस दी ए वडियाई सदा ही मन नू खिच पाउंदी है, मन नू प्यार दा रंग चाढ़दी है, चित नू प्रसन्न करदी है। सतगुरु जी ने बाणी दे अंदर अकाल पुरख प्रभु दी अगम्मी सोभा दा वर्णन करदिआं उस नू नित नवा कह के वडियाया है। गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह दा फुरमान है, साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। जेकर ओ परमात्मा नित नवा है, भाव उस दे गुण, उस दियां चंगियाईयां, उस दियां वडियाईयां नित नवियां हन, तां उस दी सोभा भी सदा नव तन होवेगी। बिलावल राग दे अंदर पंचम पातशाह गुरुदेव ने वचन कीता है कि मेरा खसम प्रभु हर वेले नवा है, जवान है, भाव उस दा अपने भगतां दे प्रति प्यार कदी

मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी औगण मेरे। इस शब्द गायन कीता सी भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने

0: गुण कर तारे उचरे गुर अमरदास जन सेवो तिन दुख दरिद्र पर हर परे।
1: चित चितो अरदास कहूं पर कह भी ना सकूं, सर चिंतु पाद सात संगत हां तको, तेरे हुक्म पवे निशान तो करो साहब की सेवा, जब गुर देखे शुभ दिस नाम करता मुख मेवा, अगम अलख कारण परख जो फरमावे सो कहूं, गुरु अमरदास कारण करना।

0: हुकम बोझ विचार पावै। कल मह रूप करता पुरख सो जाने जिन किश कियो। गुर मिलियो सोए भिखा कह सहज रंग दर्शन दियो।
1: रहो संत हो टोल साध वो तेरे डिठे सन्यास।

ताबरे धर्म की आस करे, हार जियो कृपा कर लिवलावे, गुर प्रसादे हर तन पायो, अंते चल दिया नाल चलियो, कहत कबीर सुनहोर संत हो,